我说你那竹马的来说别离苏哈西尼苏哈杜拉帕西尼。

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: कुंज जिसमें आग जलती है, जिसके इर्द गिर्द हम सात फेरे लेंगे और आखिरी दम तक एक दूसरे का।
0: आप सुन रहे हैं जसविंदर नरूला और कुमार सानू की आवाज में फिल्म विरासत का ये गीत।

मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।

0: सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
1: चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्रा
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाई फाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत या आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: पढ़ तो जाए समझ।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी बिल्लव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
3: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
3: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
3: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
3: जी।
1: तो आज
3: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
3: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
3: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
1: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
3: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
3: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
3: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
3: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
3: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
3: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
3: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
3: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
3: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो आप जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे? समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
3: जी।
1: फिर क्या होता है विमलेश?
3: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
3: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
3: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के

0: बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
1: जी,
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पी उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ मा पा नि गा पा गा मा रे सा पा।
1: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
2: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।
3: ये लेलं, ये लेलं, ये लेलं।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ

0: यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ।
1: हाँ हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु

0: डू में पड़ता है।
1: जी।
2: अच्छा,
0: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
2: ओह,
0: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा,
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नया मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
1: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
4: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहे तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
2: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, पर अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं।
3: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। अब प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचार को हम जयपुर के आकाशवाणी से रिले करेंगे।
4: माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा, आरती और प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। नेत्रदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से नेत्रदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान का निर्णय किसी की अंधेरी दुनिया में नई रोशनी और नई उम्मीद बन सकता है। नेत्रदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष यातायात और कानून पालन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के आठवें दिन कल करीब 8,500 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर B.L. मीणा ने बताया कि इस दौरान वाहनों पर काली फिल्म लगाने, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों तथा बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रखरखाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत NHAI ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों के मशीनों के जरिए रखरखाव और साफ सफाई तथा स्वचालित गड्ढा भरने के लिए उपकरणों की तैनाती के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से 14 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच आज तेज गर्मी से हाल बेहाल हैं। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। कल कई सीमावर्ती इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है और आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

मोमल कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को आपकी सखी आपकी रेडियो सखी प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है बहनों, इसमें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, ख़ास तौर पर तो पीने का। और एक खाने की भी चीज़ है कि अगर इतनी तेज़ गर्मी में हम बाहर का खाना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर के खाने कौन से तेल में बने होते हैं, कब बने होते हैं, हमें नहीं पता है। और एक चीज़ और है कि इस मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ लीजिए। एक तो है कि हम पूरे दिन में, कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल घरों में एसी लग रहा है, कूलर होता है, तो इतनी प्यास ही नहीं लगती है, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो गर्मी का एहसास होता है, घरों में तो फिर भी कम होता है, तो इतनी प्यास नहीं लगती है, तो फिर पानी भी कम पिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्यास नहीं है, फिर भी आप अपना एक अनुमान लगा के रखिए कि मुझे पूरे दिन में इतने ग्लास पानी पीना और पीना ही है, चाहे प्यास हो चाहे नहीं हो। जब और एक चीज़ है कि आप जब पानी पिए तो उसको हमेशा बैठ के पिए, बैठ के पानी पिया हुआ हमेशा फ़ायदा देता है। हम क्या करते हैं, कई बार फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज से बोतल लेते हैं, वहीं खड़े खड़े पी लेते हैं, मटकी से पानी लेते हैं ग्लास में और वहीं खड़े खड़े पी लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। और नुकसान आता है सीधा, कहते हैं कि खड़े होकर पिया गया पानी हमेशा घुटनों पर असर करता है और घुटने जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप पानी पिए तो हमेशा खड़े होकर ही पिए। और एक चीज़ और है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत है, तो इसमें गर्म हवाएं भी चल रही हैं, तो ये होती है लू। इस लू से बचने के लिए हमें ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जो हम बच सकें? वैसे तो ये होता है कि जब हमें लग रहा है ना कि गर्मी आ रही है, उससे पहले ही हमें ये सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए खाने पीने की। अब है कि बच्चे जैसे भी घर पर हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, तो हम ऐसे कुछ ड्रिंक बना के रख सकते हैं उनको देने के लिए कि वो गर्मी से बचाव भी करते हैं और दिमाग भी ठंडा रखते हैं। अब हम तो घर में रहते हैं, लेकिन हम बाहर की दुनिया के बारे में जान सकते हैं कि कितनी भागदौड़ वाली लाइफ है, कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है काम को लेकर, कोई भी काम आसान नहीं होता। हम अपने शब्दों में कह देते हैं कि किचन का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नहीं, बाहर भी बहुत स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस के बीच में अगर कोई घर पर आए और उसको आराम से कुछ अच्छा पीने को मिल जाए, तो ऐसे लगता है कि सारी थकान उतर गई है। लेकिन हाँ, वो पीने में भी ये नहीं होना चाहिए कि हम कॉफ़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, इतनी गर्मी में ये चीज़ें थोड़ी सी दूर रखनी चाहिए। आप ठंडी चीज़ें दीजिए, ठंडे में जैसे ये भी नहीं कि ठंडा, वो भी एक नुकसान देता है, घर की बनी चीज़ें। अब जैसे घर की बनी चीज़ों में अभी नींबू पानी, नींबू को उबारा है तो आप नींबू को स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे नींबू बहुत आ रहा है तो कई बार नींबू को स्टोर करके रखते भी हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा गल जाता है, तो ऐसा कीजिए कि किसी जार में या बर्तन में नींबू का रस पूरा निकाल लीजिए और उसको आइस वाली ट्रे होती है ना, उसमें जमा कर फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपको चाहिए एक क्यूट आप गिलास में लीजिए और आप उसमें पानी मिलाइए और चीनी और नमक मिला लीजिए, आपकी यूँ क्यों तुरंत नींबू पानी तैयार हो जाएगा। अब जैसे गर्मी में नींबू पानी है, केरी पानी है, मार्केट में केरी खूब आ रही है, आप चाहे तो उसको लाके एक साथ बॉईल करके, कई बार ऐसा होता है दो दो तीन तीन केरी उबालते उबालते भी थोड़ा आलस आ जाता है, तो अब एक साथ खूब सारी केरी लाके उसको बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके उसी पानी में, गर्म पानी में उसको जब ठंडा हो जाए तो उसी में मैश कर लीजिए और बारीक छलनी से छान कर किसी बोतल में या बड़े जार में रख के फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको चाहिए कि आज आपको केरी पानी बनाना है, तो उसमें से थोड़ा सा पानी लेके और पानी मिला के जितना आपको खट्टा चाहिए, मीठा

चाहिए। आप उसमें पानी मिला के काला नमक, सूखा पुदीना, हल्की सी लाल मिर्च, नॉर्मल नमक, ये सब मिला के, अगर आपको मीठा चाहिए तो थोड़े से चीनी के दाने डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खट्टा ले सकते हैं तो खट्टा, और उसको फिर थोड़ी सी देर फ्रीज में रखे, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, और जब आप बाहर से आ रहे हैं या आप घर में आपने कुछ काम किया, आपको लग रहा है थोड़ी गर्मी सी लग रही है, तो पसीना सुखा कर उसको ले लीजिए। ये कैरी पानी बहुत फायदा करता है, ये गर्मी के लिए तो सबसे बेटर ड्रिंक है। इससे आप लू से भी बच सकते हैं और आप ये ठंड का भी दे। हम बाहर के ठंडे लाते हैं पीते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कब का पैक किया हुआ है, फिर वो नुकसान देते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, गर्मी में हम सोचते हैं कि रात को अच्छे से खाना खाया था, लेकिन कई बार रात को तबीयत खराब हो जाती है, हम ध्यान नहीं लगा पाते कि आज हमने पूरे दिन में ऐसी क्या चीज़ खाई जिससे हमारी तबीयत खराब हुई। हमें लगता है शायद हमने खाना लेट खाया, या खाने में कुछ मात्रा ऐसी हो गई है, ज़्यादा खाना गया, एसिडिटी हो गई। कई बार ऐसा नहीं होता है, हम अगर पूरे दिन का अगर सोचें तो पता चलेगा कि आज हमने ये ड्रिंक ली थी सर, इसकी वजह से हमारी तबीयत। लेकिन केरी पानी, नींबू पानी, इमली पानी, आम रस, ये सब प्योरिटी होती है जो घर पे बनी होती है। इनसे कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता कि आपने लिया कोई ज्यादा मात्रा में लिया। अब केरी पानी है, आपने 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास ले लिया, तो कोई नुकसान नहीं देगा, उल्टा पानी आपके पेट में जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे ही हम बना सकते हैं इमली पानी। इमली पानी में भी आप इमली को और गुड़ को एक साथ में 1-1.5 घंटा पहले पानी में मिक्स करके रख दीजिए। जब आपको लगे कि वहाँ वो बॉयल, वो गर्म हो गया है, या फिर वो थोड़ा सा मसाला बन गया है, तो आप उसको हाथ से मैश करके और वही छलनी से छान के और उसमें और नॉर्मल पानी मिला के, अब गुड़ है तो आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं, बस आपको सूखा पुदीना और भुना हुआ जीरा, हल्की सी लाल मिर्च और पुदीना डाल के उसको तैयार करना है, और ग्लास में उसको फ्रिज में रखिए। जब आपको पीना हो और घर में किसी को सर्व करना हो तो उसमें बर्फ की एक पीस डाल के सबको सर्व कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत फायदेमंद करती है। आमरस तो नॉर्मली शाम को सभी के घरों में बनता है, तो ये भी एक प्योरिटी होती है कि हम घर की बनी चीजें ले रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जितना आप घर का पदार्थ, पेय पदार्थ लेंगे, वो ज्यादा फायदा करता है बाजार के मुकाबले, क्योंकि बाजार में हमें नहीं होता ना कि कब कौन सी चीज आई है, कब पैक हुई है, नुकसान देता है। ये घर की चीजें जब आप लें, जब आपका मन करे तब आप पी सकते हैं। और बाहर से आते ही बस ये होता है कि बाहर से आते एकदम ये ठंडी चीजें ना लें, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। बाहर से आए आते अपन एसी कूलर में बैठ जाते हैं, एक तो गर्मी से आए एकदम ठंडा मौसम होता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए थोड़ा अपना टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर हम एसी या कूलर में बैठे और फिर ये चीजें लें। ये बहुत फायदा करती है, नुकसान कहीं से भी कुछ नहीं है, और ये घर पे बनती है सबसे बड़ी चीज। तो ORS घोल होता है, वो आप घर पे बना सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना है, वही हल्का सा काला नमक, नॉर्मल नमक, नींबू लेना है, और आप इसको दिन में 3-4 बार पी सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि सिंपल पानी हमें अच्छा लेना, मौसम के अनुसार ऐसा लगता है सिंपल पानी अच्छा नहीं लग रहा है, अब जैसे वही है कि हम वही नॉर्मल पूरे दिन एसी कूलर इंदर ही बैठे रहते हैं तो प्यास लगती नहीं, लेकिन आप ऐसी ड्रिंक लेंगे तो आपका बार बार पीने को मन करेगा कि कुछ ठंडा ले लेते हैं कुछ ठंडा। बस ये था कि इस मौसम में चाय और कॉफी से दूर रखिए, वैसे इतनी गर्मी और फिर गर्म चीजें करती हैं चाय कॉफी, ये बहुत ज्यादा गर्म करती हैं, इसलिए आप ठंडी चीजें लिए, दिल और दिमाग दोनों ठंडा रहेगा। तो आपकी और शीतलता बढ़ाने के लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहनों हम बात कर रहे थे घर में बने शीतल पे, या यूं कुछ कह सकते हैं कि कुछ ठंडा बनाना। अगर किसी काम में लगे रहे ना तो मन लगा रहता है, और गर्मी में तो वैसे भी ये तो गर्मी, ऊपर से कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। अगर कुछ नई चीज़ बनानी हो, ये सोचते हैं ना कि मार्केट से बच्चों को लाकर खिलाएं नुकसान देगा, तो घर पे ही कुछ ना कुछ बनाए। और अभी तो जैसे समर चल रहा है तो मेहमान आए हुए हैं, मेहमान जा रहे हैं, सबके यही चल रहा है, और सर्दी में दिन छोटे होते हैं तो समय ऐसे निकलता है पता ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन वो बिगड़ जाता है, या मन चाहा काम नहीं होता है तो मन किसी काम में नहीं लगता है, और बैठे बैठे सोचते रहते हैं फिर दिमाग में आता है कि अगर बैठे रहेंगे तो वही खाली दिमाग शैतान का हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही होती है, अगर आप किसी काम में लगे रहे तो मन लगा रहता है और बातों में मन नहीं उलझता है। अब यूं कहे कि जैसे खाली बैठे थे तो कभी किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में कुछ सोचना, कभी ये दिमाग दौड़ाना, कभी वहाँ दिमाग दौड़ाना, पूरे दिन बस यही सब चलता रहता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि सिर्फ और कुछ नहीं होता है, हमारा दिमाग बस चारों तरफ से घिर जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सही को भी गलत ही समझ लेते हैं, और ऐसा होता है ना कि हमने कुछ काम किया वो गलत हो गया या सक्सेस नहीं हुआ तो भी मन उदास हो जाता है। जब मन उदास होता है तो फिर लगता है ये काम करेंगे ही नहीं, हो तो रहा नहीं है, और उस चीज़ से मन हटा लेते हैं। नहीं, अगर आपने कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ बनाने का सोचा है तो आप उसको पूरा करिए। अपने दिमाग को खाली मत बिठाइए, जितना आप खाली दिमाग में रखेंगे, जितना आप खाली रहेंगे, आप देखिए उतना आप स्ट्रेस की तरफ चले जाएंगे। आपका मन अगर किसी काम में नहीं लगा तो थोड़ी देर आप बैठिए, दिमाग को शांत करिए, फिर वापस उसी काम में लग जाइए। जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते हैं, और जब हम खाली होते हैं ना तो यही होता है कि हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त मन लग नहीं रहा होता है, खाली दिमाग में इतने सारे फितूर, इतनी सारी बातें आती है, पता नहीं कब कब की बातें आ जाती है। कई बार घर में कोई दो बात हो गई, कहीं बाहर गए तो कुछ हो गया, तब तक की बातें वो याद आती है और दिमाग दौड़ता रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि खाली दिमाग की वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सबको सहेज के चलना, सबको एक करके चलना, ये एक गृहिणी के हाथ में होता है। और वैसे तो खाली दिमाग शैतान का, ये तो हर किसी के साथ लागू होता है, ये कहावत आपने सुनी भी है कि खाली दिमाग शैतान का, बिल्कुल सही है। अपने दिमाग को खाली, यानी कि दिमाग को खाली मीन्स आप खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहिए। जितना आप वर्क करेंगे, और अगर आप किसी वर्क में सफल नहीं हो पाए तो उसी को वर्क को वापस कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। कई बार हो सकता है कि हमें समझ, और हमें ये सोच, खाली दिमाग रखने से हमें ये सोचना चाहिए हमने जो काम किया था उसमें कहाँ कमी रह गई, जो हमारा ये सक्सेस नहीं हो पाया, हमें सफलता नहीं मिल पाई, ये कहाँ रह गया, कहाँ चूक हो गई। अगर ये सोचे तो ज़्यादा अच्छा है ये सोचने के बजाय कि अब ये काम करना ही नहीं है, हो तो रहा नहीं है, और उल्टी बातें सोचना, देखो वो आगे बढ़ गया वो नहीं। हमें उस वक्त किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है हमें इस काम को पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और कई बार ऐसा होता है ना कि

हमें जब कोई रचनात्मक काम नहीं मिलता या हमारी सोच के अनुरूप काम नहीं मिलता तो हमको उसी काम में मन भी नहीं लगता है और हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें आती है। नेगेटिव बातें जब आती है, जब हम अपने द्वारा किया गया काम में सफलता ना मिलना, या यूं कह सकते हैं कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें आती है, गलत बातें आती है। तो इसमें हम सुधार करें और अपने मुख्य बिंदु बनाएं कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप कई बार ऐसा लग रहा है ना कि हम सफल नहीं, तो आप सुबह उठकर व्यायाम करिए। व्यायाम जब आप करेंगे ना, तो आप देखिए आपका दिमाग कितना शांत रहेगा, एकदम मन को शांति मिलेगी, दिमाग को शांति मिलेगी, फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा फील महसूस होगा। अगर आपका पास कोई काम नहीं है तो आप किताबें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए, किसी ना किसी चीज में मन लगा के रखिए, क्योंकि गलत खाली बैठना इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। और किसी ना किसी काम में व्यस्त रहने से आदमी हमेशा एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए अपने आप को जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना आप अपने आप में एक सुकून पाएंगे। वैसे तो हमारी सारी बहनें खाली कम ही बैठती हैं, घर में इतने सारे काम होते हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमारा मन चाह काम नहीं हो पाता है। हम जो सोच रहे थे, अब कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं आज ये सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनती है, पूरे मन से बनाते हैं, पूरे मन से, लेकिन हम लास्ट में क्या करते हैं, सबके चेहरे देखते हैं, कोई कुछ बोलेगा कि अच्छी बनी है, कोई कुछ नहीं बोलता, तो मन क्या करता है, दोबारा बनाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं हो, और दिमाग में फिर पूरे दिन आता है मैंने इतनी मेहनत करी, वो पूरे दिन दिमाग में वही घूमता रहेगा, नहीं एक बार अच्छी नहीं बनी होगी, शायद दोबारा ट्राई करी, ये मैं सोचिए अब मैं बनाऊंगी ही नहीं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी कमी रह गई हो, इसलिए अपने आप को जितना बिजी रहे, और वैसे भी आपके ऊपर तो पूरे दिन इतने, पूरे सुबह से लेकर शाम तक इतना लोड होता है ना कि शायद कोई समझ नहीं पाता। और हम यही सोचते हैं जब हम खाली होते हैं, तो हम यही सोचते हैं हम पूरे दिन काम में लग रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, किसी को नजर नहीं आता है। कई बार होता है ना कि हम जब पूरे दिन काम करते हैं तो लगता है थोड़ी देर टीवी देख लें या थोड़ी देर मोबाइल देख लें या किसी से बात कर लें, पूरे दिन जब काम में लगे रहते हैं ना तो किसी की नजर हमारे ऊपर नहीं जाती है, लेकिन अगर हमने थोड़ी देर टीवी देख ली, थोड़ी देर मोबाइल देख लिया, तो तुरंत नजर जाएगी, देखो खाली बैठे हैं, टीवी और मोबाइल चल रहा है, क्या बात है, यह कहा जाता है, सुनने में भी यही आता है। लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, ये ना सोचे कोई क्या कहेगा। हम कई बार हो सकते हैं अपना थोड़ा सा पूरे दिन में थोड़ा सा अपना खाली समय निकालते हैं, तो उस खाली समय में हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या किसी से बात करके आपको अच्छा लगता है आप बात कीजिए, गाने सुनना अच्छा लगता है तो गाने सुनिए, किताब पढ़ने अच्छे तो किताब पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करिए, और कुछ नहीं तो बागवानी, अगर आपके घर में कोई छोटे मोटे पौधे लगे हुए हैं तो उनकी बागवानी करिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। जितना आप लोगों की बातें सुनेंगे आप उतने स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, चिंता की तरफ जाएंगे, और नतीजा कुछ नहीं होता है, चिंताएं चिताएं होती है, और चिंता हमेशा बीमारियां लेके आती है। बीमारी से दूर रहना है तो अपने आप को खुश रखिए, व्यस्त रहिए। तो चलिए आपको व्यस्त और ज्यादा कर देते हैं, सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी अनाड़ी। गीत को आवाज दी थी उदित नारायण, साधना सरगम ने। हम बात कर रहे थे खाली दिमाग। जी हाँ, वैसे तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारी सारी बहनें कहीं ना कहीं घूमने गई होंगी, और अभी जाने का प्लान भी बना रही होंगी। कहीं गर्मी को देख कर बैठ रही होंगी कि अभी थोड़ी गर्मी कम होने दो, फिर जाएंगे। लेकिन हाँ, आप फटाफट जाके आ जाइए, समर वेकेशन में अब कुछ ही दिन बचे हैं, फिर समर वेकेशन समाप्त हो जाएगा। फिर बहनों की वही पहले वाली भाग दौड़ लाइफ, सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन, बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, फिर वापस आए जब बच्चों के मनपसंद खाना बनाना, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। लेकिन अभी है, वैसे भी जाना चाहिए, थोड़ा सा इस जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक ही एक जगह रह के रोज के वही काम करके कई बार हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर लगता है नहीं कहीं जाना चाहिए। लेकिन जाने के लिए हमें पूरे साल वेट करना पड़ता है, वो होता है समर वेकेशन, क्योंकि यही थोड़ा लॉन्ग होता है। विंटर में तो कमी छुट्टियां होती है, तो कहीं आना जाना बैठता नहीं है, फिर बच्चों की मिड पढ़ाई चल रही होती है। लेकिन समर ऐसा होता है कि हम कहीं जाकर आ सकते हैं। और लेकिन हम जब भी कहीं जाए ना, तो थोड़ी सी सावधानी से जाएं, अपना एक प्लान बना के जाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना, इतनी ठगी चल रही है, इतना क्राइम चल रहा है, ऐसे में कहीं जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम प्लानिंग के ना सबसे जाते हैं कि हमें कौन सा सामान कैसे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, तो हमारी यात्रा अच्छी भी रहती है और मजा भी आता है। लेकिन अगर इस यात्रा में थोड़ा सा नुकसान हो जाए, तो सारी यात्रा पर पानी फिर जाता है। इसलिए जब भी कहीं जाएं, तो एक प्लानिंग के हिसाब से जाएं, तो आपकी जो यात्रा होती है वो अच्छी रहेगी। मतलब यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी सी सावधानियां बरतें। अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो उसको पहले सोच ली कि कहाँ जाना है, पहले तो हमें ये प्लानिंग बनानी चाहिए कि कहाँ जाएं और कैसे कहाँ रहना है, कितने दिन स्टे करना है, क्या क्या लेके जाना है। सामान भी ऐसे ऐसे होना चाहिए जो, और कहीं घूमने जा रहे हो ना, तो कम से कम सामान लेके जाइए। ज्यादा सामान लेके जाते हैं तो हमें वही कि जगह जगह रुकना पड़ता, नहीं तो आप हल्का फुल्का सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि समर है तो समर में कॉटन के कपड़े वगैरह चल जाते हैं, कोई हैवी कपड़े चाहिए। विंटर में हम सोच सकते हैं कि वुलन ज्यादा हो जाता है, लेकिन समर में तो ज्यादा नॉर्मल कपड़े ही चल जाते हैं। लेकिन ये चीज है कि यात्रा के समय सुरक्षित और आरामदायक रहने के लिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। यात्रा के दौरान बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियां होनी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास अपने जो महत्वपूर्ण जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लेके जाते हैं ना, जैसे आजकल ट्रेन में जा रहे हैं तो आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आपका टिकट तो सब जगह टाइम पे जगह पे रखा हुआ हो, कि एकदम अगर अचानक आईटीटी का फटाफट उसे देखेंगे। और हमें ऐसा होता नहीं कि हम उसको ब्रीफकेस में रख देते हैं, बैग में डाल देते हैं, बैग में इतनी सारी जेबें होती है, किस में डाल देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये चीजें सब अपने पास होनी चाहिए। और अपने पास अगर जा रहे हो तो बड़ा जो लगेज है वो तो है, लेकिन छोटा सा बैग अपने पास एनी टाइम रखना चाहिए, जिसमें आप ये सारे दस्तावेज रख सकते हैं। और आप जा रहे हैं तो दिखती बात है, तो रुपया पैसा भी लेके जाएंगे, हर जगह एटीएम भी ना ले जाना सुरक्षित नहीं है। तो जब आप रुपये पैसे लेके जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि सारे रुपये पैसे एक जगह ना रखें, उन्हें अलग अलग जगह पे रखें। जैसे कुछ अपने पास रख लिए, कुछ बैग में रख लिए, अगर दो अटैचियां हैं तो दो उस अटैची में रख लिए, एक साथ रखेंगे, बाई चांस कभी कोई नुकसान हो गया तो पूरा एक साथ नुकसान हो जाएगा। नहीं तो अगर एक कभी कोई नुकसान हो गया तो बाकी पैसा तो सुरक्षित रहेगा ना। और एक होता है कि आप गर्मी में जा रहे हैं या सर्दी में जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, तो फर्स्ट एड किट साथ में लेके जाइए। जैसे पेट दर्द की दवाई, वॉमिटिंग की दवाई, सिर दर्द की दवाई, कोई छोटी मोटी पट्टी, रुई, ये सब, क्योंकि हम जाते हैं कोई थोड़ी बहुत चोट लग जाए, कर जाती है, चीजें हमारे पास होती है, हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। कहीं जाते हैं तो कुछ खाने में बदलाव, पानी में बदलाव, वॉमिटिंग हो जाती है, चक्कर आने लग, गर्मी है तो चक्कर आने लगते हैं, तो अगर हमारे पास फर्स्ट एड किट होगा तो हमें कहीं किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कि अनजान जगह पे हमें मालूम नहीं होता है, फिर सोचते किससे पूछेंगे, हमें जगह नहीं मालूम है, तो आप खुद भी परेशान होएंगे और साथ में जो जिसकी तबीयत खराब वो भी परेशान होएगा। इसलिए सारी चीजें साथ में होनी चाहिए। और खान पान का पूरा ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके अपने घर से सूखा सामान बनाकर ले जाइए। गर्मियों में तरह तरह की चीजें खाने से भी कई बार हमें बदहजमी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, फिर घूमने का सारा मजा खराब हो जाता है। कहीं जाकर अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर घूमना सारा बेकार हो जाता है। इसलिए आप अपने साथ कुछ, जैसे घर में मट्ठी है, भुजिया है, खाखरे हैं, ये आप सब सूखा सामान ले जा सकती हैं। अब जैसे भी मौसम है केरी के अचार का, तो केरी के अचार घर में बना हुआ आप साथ में लेके जाइए। तो रोटियां हैं या पराठे कहीं पे भी मिल जाते हैं। कई बार हमें सब्जी कहीं का पसंद नहीं आ रही, कहीं पे तेल ज्यादा है, मिर्ची मसाले हम कम खा रहे हैं, तो घर से ये लेके जाइए। तो आप ट्रेन बाई चांस लेट हो गई है, कहीं आपको खाने की व्यवस्था नहीं बैठ पाई है, तो आप ये सब चीजें अपने पास होंगे, तो आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और प्योरिटी भी आपको मिलेगी, आप अपने हाथ की बनी चीजें खा पाएंगे। और एक होता है हाइड्रेशन। इतनी गर्मी में आप कहीं जा रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी ना होने दे, ग्लूकोज साथ में

लेकर जाएं। जी हाँ, कि आपको लग रहा है थोड़ी गर्मी लग रही है, पानी कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो ORS घोल पास में होगा तो आप फटाफट उसको पी सकते हैं, अपने साथी जो गए हैं उनको भी पिला सकते हैं। नींबू साथ में लेके जाइए, नींबू बहुत काम आता है। पावर बैंक साथ में लेके जाइए, आप कई बार फोन चार्ज करने की जगह नहीं मिल रही है, पावर बैंक आपके पास में है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि फोन डिस्चार्ज होता है, हम अपने घर वालों को इतना नहीं दे पाते कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, लेकिन पावर बैंक होगा तो, क्योंकि हम तो जाते हैं लेकिन जब घर पे जो फैमिली रहती है उन्हें ज्यादा चिंता होती है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, हम उन्हें टाइम टू टाइम सारी खबर दे सकते हैं। और ऑनलाइन मैप्स, जी हाँ, जिन रास्तों या जगहों पर नेटवर्क की समस्या हो सकती है वहाँ गूगल मैप में ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें कि हमें कहीं दिक्कत ना हो। और अपने सामान की सुरक्षा खुद रखें, और फिर भी सामान के ऊपर भी अपना नाम, अपना फोन नंबर सब लिख के रखें। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, कुछ लगेज पीछे रह जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में ट्रेन से उतर जाते हैं, सामान ट्रेन में रह जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी जिंदा होती तो सामान अगर उस पर सारा पता लिखा है तो हमारे तक पहुंच सकता है। तो ये सब चीजें की सावधानी भी रखनी चाहिए। और मूल्य वस्तुएं, जैसे अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप गोल्ड ना लेके जाएं, अपने बस फोन है या छोटी मोटी, जैसे आप चैन वगैरह कानों में वगैरह, हो सकता है गोल्ड का ना पहले आर्टिफिशियल लेके जाएं, क्योंकि हम जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अब आप घूमने जा रहे हैं, सोने की चैन पहन ली, कानों में पहन लिया, अंगूठियां पहन ली, खूब सारे पहन लिए, और फिर कहीं नुकसान हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं घूमने होटल रूम में, कई बार ऐसा गर्मी लग रही है, हम चीजें उतार देते हैं, जल्दबाजी में जब रवाना होते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, फिर नुकसान होता है, वो सारा हम जो घूम के आए हैं वो एक नुकसान बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए अपनी यात्रा को मंगलमय बनाना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपने सामान की सुरक्षा रखिए, और अपने जो मूल्य चीजें हैं उनको ना लेके जा भी रहे हैं तो उनकी सुरक्षा अपने हाथ रखिए। कहीं जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप सारी चीजें उतारें, हर जगह पहन के रखिए, और लाइट वेट सामान लेके जाइए जितना आप उठा सकते हैं। आपने खूब भर लिया है फिर इंतजार करते हैं तो ये बैग वो उठाए, वो बैग उठाए, ऐसे नहीं, एक ऐसा है कैरी बैग लीजिए पीछे टांगी और अपनी यात्रा पर निकलिए, तो आपको घूमने का भी मजा आएगा और आप इंजॉय भी पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आपका घूमने का मजा भी खराब हो जाएगा अगर कोई नुकसान हो गया तो। ये छोटी छोटी चीजें होती है, हम अपनी यात्रा के अनुसार एक बैठ कर नहीं एक चार्ली बना सकते हैं कि हमें कहाँ कैसे जाना है, क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या, और हमें पता भी होना चाहिए हम क्या क्या सामान लेके गए हैं, पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था हो हमारे पास, क्योंकि वही होता है कि हम अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम थोड़ा टाइम, लेकिन पानी अगर नहीं मिल पाता तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए पानी की पूरी व्यवस्था लेके जाइए, कैंपर वगैरह जो भी है भर के लेके जाइए। ये छोटी छोटी चीजों का हम शुरू से अगर ध्यान रखते हैं ना तो अपनी यात्रा को अच्छा बना सकते हैं। आपकी यात्रा, अगर आप कहीं जा रही हैं बहनों, तो आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। जी हाँ, तो लीजिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहनों हम बात कर रहे थे यात्रा के समय ध्यान रखने के लिए। जी हाँ, अब हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे। जी हाँ, दादी नानी के घरेलू नुस्खे जो बहुत काम आते हैं। अभी भी हम सोचे ना कि जब हमारे घर में कभी कोई परेशानी आ गई करी है तो हम सीधे यही बड़ों के पास जाते हैं, इसका क्या है, ये कैसे होगा, और एक सेकंड में हमें उसका उत्तर मिल जाता है और वो बिल्कुल सही होता है। तभी तो घर में जो बड़े बुजुर्ग तो हमेशा यही जब हम कहते हैं ना हाँ ये काम हो गया तो उनका एक ही जवाब होता है, ये बाल जो है ना हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए उम्र के हिसाब से। तो उन्हें हर चीज़ का तजुर्बा होता है, हर चीज़ की नॉलेज होती है और बड़ों के कदमों पर चलना ये बहुत अच्छी बात होती है। अब पहले कहाँ इतना सब डॉक्टर के पास जाते थे, करते थे, घर में ही

जैसे अगर रात को पेट में दर्द हो गया है तो हींग लगा ली, हींग को पानी में घोल के दे दिया। अगर रात को जी मचला रहा है, अब जैसे कहते हैं एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी की गोली ले लो, ये ले लो, लेकिन पहले कहाँ एसिडिटी होती तो शायद थी, लेकिन दवाई वगैरह इतनी नहीं ली जाती थी, घरेलू इलाज ही किया जाता था। कि रात को अगर वॉमिटिंग हो रही है, जी घबरा रहा है, तो लौंग को कूट के पानी में उबाल के उसका पानी पी लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। अब हम कह रहे हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं तो कभी हम ये शैम्पू, कभी ये हेयर ड्रायर, कभी क्या कुछ लगाते रहते हैं, लेकिन पहले सिर्फ मुल्तानी मिट्टी या फिर दही, दही में नींबू निचोड़ के लगाना, ऐसी चीजें लगाई जाती थी। तो ये दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं और यूँ कह सकते हैं बहुत प्योर होते हैं। आजकल तो हम कह सकते हैं हर चीज में मिलावट आती है, किसी भी चीज का उपयोग करके देख लो हर चीज में मिलावट मिलेगी, लेकिन पहले नुस्खे जो लिए होते थे ये काम में, ये बहुत फायदेमंद भी होते थे और घरेलू चीजों से बने होते थे। कि अगर चेहरे के नीचे जैसे आंखों के नीचे झाइयां हो गई है तो अब हम कभी ये क्रीम लगा रहे हैं, कभी वो लेके आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा कि रखे रखे एक्सपायर हो जाती है, हम सोचते नहीं ये तो हमने यूज में नहीं करी और फिर भी उसको यूज कर लेते हैं। तो इसके लेकिन पहले ये सोचना ही नहीं पड़ता था कि क्या एक्सपायर हुआ, कि घरेलू चीजें होती थी कि आप क्या करके आलू को कस के और आलू का रस लेके और आंखों के नीचे लगा लो, हफ्ते भर ऐसा लगा के देखो, बिल्कुल ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। के चेहरे आप अब चेहरे पे तरह तरह के हम प्रोडक्ट लगाते हैं कि काली झाइयाँ हो गई है, कभी कह रहे निशान हो गए हैं, फुंसियाँ हो गई है। पहले बस लिया कि मलाई में थोड़ा सा बेसन और मिला के, शहद मिला के चेहरे पे लगा लीजिए, बिल्कुल चेहरा क्लीन हो जाएगा। यहाँ तक कि साबुन का उपयोग भी पहले नहीं करते थे, पहले सिर्फ बाल जो हैं वो मुल्तानी मिट्टी से धोए जाते थे और चेहरे पे ये सब लगाए जाते थे, साबुन भी इतने उपयोग में नहीं आते थे। तो आज भी हम देख रहे हैं और हमारे अंदर और पहले जो हमारी दादी नानी चाची जो हैं उनमें आज और हमारे में बहुत फर्क है, खान पान को लेकर, रहवास को लेकर। आज जितना हम विज्ञान दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी बीमारियां हमारे गले लगती जा रही हैं, और पहले आज वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, कोई शुगर कोई बीपी कुछ नहीं। और आज तो पहले से सबसे पहले दर्द आता है घुटनों में कि घुटने काम नहीं करे, अभी से 30-40 की उम्र से ये शुरू हो जाता है। पहले 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, कोई घुटनों में दर्द, नीचे जमीन तक बैठ जाना, खड़े हो जाना, क्योंकि पहले के खान पान में उनमें बहुत बदलाव था। आज तो हम देख रहे हैं हर चीज तो हम बाहर से लाके खा रहे हैं, पहले घर पे पीस मसाले पीसे जाते थे, घर की चीजें काम में ली जाती थी। आजकल वो ये कि शरीर आलस हो गया या विज्ञान इतनी तरक्की कर ली कि कोई कुछ काम करना ही नहीं चाहता है, लेकिन आज भी हम घर पे वो चीजें सब यूज में ले सकते हैं। जितना हम करेंगे हाथ से काम उतना हमारा शरीर भी परफेक्ट रहेगा। हर चीज मार्केट में मिलती है, ये अलग बात है। हाँ ये भी हो सकता है कि पहले महिलाएं घरेलू काम ही करती थी, आजकल वर्किंग वुमन होती है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि हर काम को वो घर पर करें, इसलिए वो रेडीमेड सामान का उपयोग करती है। लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है जितना आपके पास समय मिले उसमें आप कुछ चीजें घर पर ही बनाइए और घर पर का यही यूज कीजिए, बाहर की चीजें यूज मत कीजिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना बीपी शुगर वगैरह ये तो आम बात होगी, जैसे पूछोगे क्या है शुगर है क्या है बीपी है, तो ये चीजें किस लिए हो रही है, खान पान को लेकर हो रही है। घर की प्योरिटी तो खत्म हो गई है, सब कुछ मार्केट से आ रहा है, इसलिए घर की चीजों को ही यूज में लेकर आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चों को भी, परिवार को भी। तो बहनों बातें आपके साथ बहुत सारी करनी थी पर घड़ी की सुइयां हमें अपना प्रोग्राम यहीं रोकने के लिए कह रही है। आपकी सेवा में आपकी सखी प्रीति फिर से हाजिर होगी, तब तक ले दीजिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी महिलाओं का कार्यक्रम मोमल, ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, और इसी के साथ 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इन समाचारों को हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
1: The headlines.

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव

0: मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 73 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों

0: के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गाँव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनन में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम आरोग्यम।
6: श्रोताओं नमस्कार। वादे के मुताबिक आज आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ लेकर एक विशेषज्ञ को, ताकि चिकित्सक की सलाह और विशेषज्ञ की नजर इन दोनों से आप भी लाभान्वित हो। आज हमारे साथ में है डॉक्टर रवि शर्मा, जो कि पेशे से योग विशेषज्ञ और प्राथमिक चिकित्सक भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब।
7: नमस्कार
6: जी। डॉक्टर साहब, योग का जो महत्व है इससे सभी लोग परिचित हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें।
7: जी।
6: जैसा कि योग का सिद्धांत है कि एक डॉक्टर बीमार को ठीक करता है, लेकिन जो योग चिकित्सक है वो बताता है कि आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ ही बने रहें।
7: जी जी, सही सही कहा
6: जी। तो वर्तमान में आप एक डॉक्टर हैं, प्राथमिक चिकित्सक भी हैं, आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो अभी किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या बीमारियां आम जन में ज्यादा अभी हो रही

0: हैं और योग के द्वारा हम कैसे उन्हें स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है,
0: जी
1: और आमजन भी यही चाहता है कि हमें योग से किस प्रकार से हम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हर आदमी की एक क्यूरीज होती है कि मैं इस रोग में ये योग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और
0: जी
1: बहुत से आप देखते रहते हो कि सालों तक योग करते रहते हैं, महीनों तक करते रहते हैं, फिर इरिटेट होके छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो
0: जी
1: योग कर रहा था, मुझे तो ये प्रॉब्लम थी और ये तो
0: हाँ
1: ज्यादा हो रही है। तो
0: जी
1: योग एक वो स्वस्थ जीवन जीने की कला और एक वो थेरेपी है जो हमें हमारा स्वास्थ्य तो बनाए रखती रखती है, साथ में हमें एक रोग मुक्त, अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए तो उससे भी योग द्वारा हम इजी वे में उसको पूर्णतया से 100% बिना किसी अतिरिक्त दुष्प्रभाव के सही कर सकते हैं।
0: जी
1: यह है। अब आपने जैसे पूछा कि पेशेंट किस हिसाब के आते हैं, आप अपने जैसलमेर में गर्म उष्ण इलाका है,
0: जी
1: तो मैंने यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट देखे हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के।
0: हाँ बिल्कुल
1: और यह है एक तरह की बीमारी है जो पूरी बीमारियों की जड़ है।
0: बिल्कुल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पेट से सब
1: हाँ
0: शुरू
1: नहीं
0: होता है।
1: देखो, ओवरऑल आयुर्वेद नहीं, मैं किसी भी विधा में देखो, अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो आप धीरे धीरे धीरे धीरे सभी प्रकार के डिजीज हैं उनके चुंगल में फंस जाओगे।
0: जी हाँ
1: और आप ये देख लो ना, अगर हम ढंग से जिसकी कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पेशेंट मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चला जाता है। शारीरिक तो
0: बिल्कुल
1: उसके प्रॉब्लम रहती रहती है, कोई भी काम खुल के नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए न जाने अपन क्या क्या बिना बताए किसी के अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से सलाह लेते क्या क्या खाते रहते हैं, और कभी भी इस बीमारी को हम इससे छुटकारा नहीं पाते हैं और बरसों बरसों तक इसको ढोए रहते हैं, और फिर इससे इसके साइड इफेक्ट में कई नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आज मैं इस योग द्वारा इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की विधा बताऊंगा।
0: वाह जरूर बताइए
1: जैसे
0: जरूर।
1: जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, जैसे आपने बताया कि आप ये चाहते हो कि जो जैसलमेर जिले में अमूमन मोस्टली जो ज्यादा बीमारियां हैं उनके सभी के ऊपर फोकस करें, तो और भी इसके आगे की बीमारियों को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि
0: जी
1: प्रत्येक बीमारी है वो अपने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होती है,
0: जी हाँ
1: और यही कोज होता है कॉन्स्टिपेशन का।
0: अच्छा
1: तो अगर आप किसी के कोई रोग होता है, कोई भी रोग होता है, जैसे एक आया है सन स्ट्रोक हो गया, तो सन
0: हाँ
1: स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कारण है कि आप धूप में गए होंगे,
0: हाँ
1: आपने
0: बिल्कुल
1: धूप, हाँ धूप कम पानी पिया होगा
0: हाँ
1: और प्रिक्वेशन नहीं रखे होंगे, हार्ड
0: जी
1: वर्क किया होगा, तो ये काफी उसके जो कॉमन केसेस होते हैं। अब आप यूं समझने की कोशिश करो कि उन जो जैसे कोज होते हैं ना, उन कोज को हटाओ आप।
0: हाँ
1: आप अब मैं आपको कह दूं कि आपके लू लगा है, ये लू के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये है, ये लो औषधि है, ये लो आप, तो ये बेटर नहीं होगा। अब ये बेटर ये होगा कि आप उन कोज को हटाते हुए उपचार करो
0: हाँ
1: ताकि दिक्कत ही ना हो। अब योग
0: जी
1: द्वारा हम ये करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन पे चलते हैं, अपने मूल मुद्दे पे आते हैं।
0: हाँ
1: अब जो जिस जिस जिस भी मरीज के जिसकी जिसके भी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उसको सबसे पहले रात को जल्दी सोए, सुबह
0: हाँ
1: टाइम से उठे, भरपूर नींद ले, ये पहली की तैयारी। जो स्क्रीन टाइम है वो कम करें अपना, डिप्रेशन की
0: सही
1: बात, सोते समय स्वाध्याय करके सोए, तो सुबह फ्रेश उठें, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अगर ना हो तो थोड़ा बहुत फिर भी सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में एक है उसपान, तो
0: अच्छा
1: उठते ही दिनचर्या में सबसे पहले रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ 640 ml, मतलब ये आधा लीटर से ऊपर, आधा लीटर के समथिंग पानी पिए।
0: हाँ
1: और आज आप किसी पेशेंट को पिलाओगे अचानक जिसने कभी नहीं पिया है, तो हो सकता है वो वॉमिटिंग कर दे, तो धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार पिए, और पानी पियोगे और फिर हल्का फुल्का टहलोगे, तो आपके आपके आंतों में जमा मल है वो अपनी गति छोड़ेगा, आंतों की एक्टिविटी बढ़ेगी और मल त्याग की क्रिया आसानी से हो जाएगी। फिर इसके लिए जो आसन है, योग योग के आसन है, उस सूक्ष्म व्यायाम से कोई भी आसन करने से पहले हमें चाहे कोई सी बीमारी की हो बॉडी को आसन करने योग्य बनाना होता है। तो आसन करने योग्य बनाने से पहले हमें जो उन आसनों को बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम चालन के लिए, बॉडी में मूवमेंट इस प्रकार के हो कि अपना ब्लड सर्कुलेशन सडन ना बढ़े, पर्टिकुलर ऑर्गन में धीरे धीरे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाए, तो वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं इनको। तो सूक्ष्म व्यायाम से अपने हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है, चल के थोड़ा बहुत आप वॉकिंग करके और जंपिंग करके इस प्रकार से आप अपनी सूक्ष्म व्यायाम करके फिर इसका इस पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आसन है एक पांव से अल्टरनेटिंग एक एक पांव से पवन मुक्तासन।
0: जी हाँ
1: ठीक है। आप अगर एक एक मिनट में चार बार पांच बार एक पांव से पांच बार एक पांव से फिर दोनों पांव से वज्रासन, खाने के बाद में वज्रासन में बैठना जिससे अपनी वज्र नाड़ी है वो प्रेस होती है, तो जैसे ही वो प्रेस होती है तो अपने हाथों की जो मूवमेंट है वो बढ़ता है, बड़ी हाथ की एक्टिविटी बढ़ती है तो मल त्याग में आसानी होती है। दूसरा कटी चक्रासन, अगर हम अपने कटी है और ट्राइंगल स्नेक पोज है, ये सब ये तीन चार आसन है इनका एक ग्रुप बना लीजिए कि सबसे पहले हम खड़े होकर अपनी कटी संचालन करेंगे, कटी संचालन के बाद में कटी चक्रासन और उसके बाद में आप वज्रासन में बैठेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे, पवन मुक्तासन के बाद में आप है ना मरकटासन करेंगे और ट्राइंगल स्नेक पोज करेंगे। इनसे आपके ये सारे के सारे अपने आंतों को एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं
0: जी।
1: तो ये एक दिन से करने से नहीं होगा, ये हमें करना ही पड़ा, कई दिन करना होगा, नित्य अपने व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि जो बीमारी होती है वो भी एक दिन में नहीं होती है ये ऐसी। और मल त्याग की क्रियाएं हैं वो भी आप मलासन में बैठ के करें।
0: सही है, तो भारतीय तरीका,
1: हाँ भारतीय संस्कृति में जिस हिसाब से बताया गया मल त्याग की जो मुद्रा बताई गई है मलासन उकड़ू बैठ के करते हैं मल त्याग, तो उसी हिसाब से करें तो आप इजी वे में इस बीमारी का पीछे छोड़ आते हैं। अब आपको किसी रोगी को बिना बताए वो स्टार्ट करता है, जैसे हार्ड एक्सरसाइज करता है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करता है जिससे अपने पेट पे जोर आने वाली है, प्रेशर देने वाली है, एक्सरसाइजेज होती है, तो बंदा पहले से ही उसके कॉन्स्टिपेशन तो है और प्रेशर देगा तो हरणिया वगैरह कुछ ना कुछ नई बीमारी ले बैठेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इस हिसाब से अगर आप कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट में देखें तो मैंने जो आपको बताया उसको आप एक सीक्वेंस से करोगे और सारे ये आसन करने के बाद में जैसे 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद में आप सूर्य नमस्कार को उसमें ऐड करो, और सूर्य नमस्कार अपने आप में एक चमत्कारिक योग है
0: जी।
1: सूर्य नमस्कार की जो 12 पोजेज हैं वो अपने आप में कंप्लीट योगासन है। तो आप पेशेंट रोगी को ये कह सकते हो कि आप शुरू में 5 सूर्य नमस्कार करो, फिर 5 से 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 20 तक ले जाओ, और अगर कोई जो मैंने जो पहले 5 एक्सरसाइज बताई और अब सूर्य नमस्कार, ये इतना मुश्किल से 15 मिनट में सारा हो जाएगा, 15 मिनट तक कर लेगा तो उसकी दिन की शुरुआत भी अच्छे से हो जाएगी, गुड हार्मोन का सिक्रेशन हो जाएगा और पूरा दिन अच्छा जाएगा
2: और
1: ये भी छूट जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, क्रम से आपने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी इस बीमारी से निजात पा सकता है, क्योंकि तो पुराना कब्ज है ना, जिसको पुराना कब्ज होता है,
1: हाँ,
0: क्या वो भी इससे धीरे धीरे ठीक हो सकता है?
1: बिल्कुल, पुराना कब्ज में आप शाम को ऋतु हरित की का प्रयोग करें पहले।
0: अच्छा,
1: ऋतु हरित की आप रात्रि में सोते समय पहले ऋतु हरित की एक हरित की का पाउडर बना ले
0: जी,
1: ठीक है। और ये मैं आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है और मैं बताना भी चाहता हूँ श्रोताओं को कि आप इसको तो लिख कर रख लो
0: जी जी।
1: अपने जो ऋतु हरित की है उसको सेवन करना, 12 महीने लगातार सेवन कर सकते हैं उसको।
0: अच्छा,
1: अब उसके लिए जो अपनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं अपने, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद,

0: हेमंत सीसर
1: जी।
0: अब इसमें ऋतु हरिति को निश्चित अनुपान के साथ में, अनुपान का मतलब होता है किस चीज के साथ में इसको हाँ, लेना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: अगर वसंत ऋतु में रात को खाने के बाद में 3 ग्राम ऋतु हरित की और उसको शहद में मिला के ली जाती है। अच्छा। ये होता है अपना चैत्र वैसाख के, जिसे मिड मार्च और मिड मई में, ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु जो अभी चल रही है, मई जून, मई मई से लेकर जुलाई तक चलेगी है, ज्येष्ठ साथ, इसमें गुड़ के साथ थोड़ा सा गुड़, मतलब 3 ग्राम हो या 3 ग्राम गुड़, उसके साथ में ऋतु हरित की को भोजना उपरांत लिया जाता है गुनगुने पानी से। फिर आ जाएगी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक है
1: जी हाँ,
0: श्रावण श्रावण भाद्रपद है, उसमें हम पीतवड़ा होता है तो उस समय अपने को ऋतु हरित की को सेंधा नमक के साथ में लिया जाता है। और फिर शरद ऋतु सितंबर से नवंबर और अश्विनी कार्तिक के महीने में, उसमें चीनी शक्कर के साथ में,
1: अच्छा
0: वही 3 ग्राम रखे अपन। और हेमंत में मार्क्सिस कोष में अदरक के साथ,
1: अदरक के साथ
0: हाँ, सर्दियों में नवंबर मिड हाँ। मिड सर्दियों में अदरक का छोटा सा टुकड़ा, मतलब 2-3 ग्राम का टुकड़ा, और यूथ को सब मात्रा में अरीत की।
1: और तो अदरक को कैसे करना, अदरक को घिस के उसका रस निकाले, ऐसे टुकड़ा का टुकड़ा सेवन कर ले उसके साथ।
0: देखो इसके लिए बेटर ये होता है कि आप 3 ग्राम का टुकड़ा ले लो और उसको थोड़ा सा पीस कर
1: हाँ।
0: थोड़ा सा उसको माम दस्ते में कूट कर
1: हाँ।
0: फिर उसमें ऋतु हरित की मिला के, और वैसे आप चबा के ले सकते हो, मगर वैसे लेंगे ना अपन तो हरित की, ऋतु हरित की का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है।
1: अच्छा,
0: तो इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि छोटी अदरक का टुकड़े का 4-5 बूंद रस निकाल ले और हाँ। उस पाउडर में मिक्स कर ले और गुनगुने पानी के साथ में ले ले। इसको आप बहुत टाइप से इंटेक कर सकते हो।
1: अच्छा।
0: और फिर आ गई अपने लास्ट शिशिर ऋतु जो जनवरी मार्च तक चलती है, माघ फाल्गुन होता है, उसमें ऋतु हरित की को छोटी पीपली के साथ लिया जाता है।
1: अच्छा,
0: है ना। तो इसी यह है विधि, आप रात्रि में भोजना उपरांत ये यूज में लोगे, और सुबह जो मैंने अभी अभी आपको जो योगासन बताए हैं उन योगासनों द्वारा पर्टिकुलर करते रहोगे तो 12 मई। अब देखो आपने अभी क्वेश्चन भी आपका यही था कि पुरानी कब्ज।
1: हाँ, पुरानी कब्ज, कई लोगों को क्या होता है कि जैसे कहीं पर गए, कुछ ऐसी चीज खाने में आ गई, जैसे फास्ट फूड हो गया या चाउमीन हो गया, ब्रेड हो गया, तो
0: हाँ, हाँ.
1: अगले दिन उन्हें मोशन क्लियर नहीं होते।
0: हाँ.
1: और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें कब से ये समस्या है।
0: हाँ,
1: उनका पेट साफ नहीं होता।
0: दिक्कत वाली बात ये है कि हमने जो हमारे साथ जो ये दिक्कत हो रही है ना, हम उसके इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो हमारे साथ रहेगी, हम उसको मान लेते हैं, अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं कि हम इसको हटा दें, क्योंकि हम दूसरे आदमी से पूछते हैं कि भाई साहब ये तो मेरे भी
1: हाँ।
0: तो अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे है तो सबके ही हो।
1: हम बात भी रोगी से करते हैं, हम सलाह किससे लेते हैं,
0: रोगी से लेते हैं,
1: उससे पीड़ित है,
0: और
1: तो वो वही देगा सलाह।
0: अब मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, तो क्या मैंने उसको देखा तो वो क्या है, किसी ने उसको कुछ ऐसी औषधि बताई, घरेलू नुस्खा बताया और नमक के साथ दिलवाया उसने। अब रोगी 3-4 दिन से ले रहा था, बेचैनी ज्यादा हो गई, तो आए यहाँ कि सर ये तो मैं ले रहा हूँ और इससे मेरे ये हुआ। तो मैंने ऐसे चेक किया तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी तो वो बीपी के पेशेंट थे और 2-3 दिन से नमक ज्यादा खा रहे थे, तो साल से उनकी बीपी और बढ़ गई। तो अगर बिना पूछे, बिना चिकित्सक की सलाह से, बिना एक योग्य चिकित्सक की सलाह से अगर हम कोई भी चीज ले रहे हैं, वो हमारे लिए अनुपयोगी साबित हो सकती है। अब अभी मैंने आपको कहा जैसे अभी योगासन, आप योगासन को एक सबसे पवित्र मानते हैं कि योगासन एक बहुत अच्छी चीज है जो इसके निर अपराध हो, एक तरह की नैसर्गिक चिकित्सा है, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं है, तो उसमें भी अगर आप गलत पोज कर रहे हो, कमर दर्द वाला आगे की फोर बेंडिंग हो रहा है तो कमर दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके ठीक नहीं होगा। तो इसी हिसाब से अगर हर एक चीज के पर्टिकुलर डिजीज में पर्टिकुलर आसन ही काम में ले जाते हैं। अब वेट लॉस का आ गया तो आप उसको पश्चिमोत्तासन कराओ, हलासन कराओ, अर्ध मत्स्यासन कराओ, भुजंगासन कराओ, चतुरंगासन कराओ, ये आप धनुरासन भी करा सकते हो उसको। अगर उसी वेट लॉस वाले है, उसकी कोई हर्निया की प्रॉब्लम है कि बेटा, तो वो ये सारे जो मैंने बताया पश्चिमोत्तासन, तो उसकी हर्निया ज्यादा हो जाएगा।

0: हमें रोगी की पूरी हिस्ट्री के साथ में पर्टिकुलर जो योग्य चिकित्सक द्वारा बताए हुए योगासन को ही करना होगा, और वो अगर आप करोगे तो 100% आपको अच्छा फायदा मिलेगा।
1: सुनेंगे तो ये पहले
0: और जो
1: जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए सही नहीं है। हाँ
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: यही यही हमसे चूक होती है। हम सुने
1: ओके
0: सुनाए मैं तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज योग करते हैं, फिर भी हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे आप कर ही गलत रहे हो, आप चीज
1: हाँ
0: ही गलत खा रहे हो, तो आपकी दिक्कत तो होनी होनी है। और अब आप देखो, अभी 21 जून को हम बड़े धूमधाम से योग दिवस मनाएंगे,
1: जी बिल्कुल
0: और अपने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार इसके प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट है, और इतना बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि गवर्नमेंट इतनी सजग क्यों है।
1: हाँ कुछ तो लाभ है इसका
0: आज
1: निश्चित तौर पे।
0: आप, हाँ यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से पेशेंटों के साथ क्या है कि बहुत सी दवाएं रेजिस्टेंस हो चुकी है,
1: अच्छा
0: असर ही नहीं कर रही है दवाएं। फिफ्थ जनरेशन से चलते चलते फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक पहुंच गए हम, इतनी एंटीबायोटिक है, इतनी औषधियां खा चुके हैं, इतनी मेडिसिन खा चुके हैं कि पेशेंट के कोई काम ही नहीं कर रही, बल्कि साइड इफेक्ट ही हो रहे हैं।
1: सही बात है।
0: तो ऐसा उसके रेजिस्टेंस हुआ क्यों? अब रेजिस्टेंस तो हमने ज्यादा खा ली, बिना मतलब खा ली, तो इन चीजों से एक ही तरीका है अपने को शरीर को निरोग रखने के लिए कि अब इसी फिजिकल एक्टिविटी से कनेक्टेड रहना होगा। और लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा इजी वे में हो गई कि फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही,
1: हो
0: तो
1: नहीं रही।
0: आपको योग को अपनी दिनचर्या में शामिल लेना करना ही होगा। इसीलिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि मैं प्रत्येक भारत के लोगों को, प्रत्येक एक छोटे से छोटे परिवार कोने तक, वहां तक भी मैं योग को इस प्रकार पहुंचा दें कि वो स्वस्थ रहने लग जाए, तो दवाई की जरूरत ना पड़े किसी प्रकार
1: सही
0: के, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ
1: मन का निवास
0: मन
1: होता
0: का
1: है।
0: आने वाले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी के लिए, इसी के चलते यह है योग दिवस का इन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया, और मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ
1: जी जरूर बताइए डॉक्टर साहब।
0: कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2026 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सामूहिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जाएगा।
1: अच्छा
0: इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नंबर है 1-800-315-7008, इस नंबर पे आप कॉल करोगे, मिस कॉल करोगे, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, फिर आपके पास एक लिंक आएगा और वो
1: जी
0: यूट्यूब पे खुलेगा,
1: जी
0: और उसके उसका टाइम होगा प्रातः 6:15 से 7:35 तक।
1: डॉक्टर साहब नंबर एक बार आप दोबारा बोल दीजिए।
0: जी मैं 1-800-315-7008
1: जी, ठीक है
0: 1-800-315-7008
1: जी
0: पे हम जैसे मिस कॉल करेंगे तो हम
1: हाँ हाँ
0: रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और ये लिंक आपको मिलेगा 14 जून को आपके मोबाइल में, जिस मोबाइल से आपने मिस कॉल किया उसमें ये इसका आ जाएगा मैसेज, और उस लिंक को आप यूट्यूब पे खोलोगे तो सुबह 6:15 से 7:35 तक ये सत्र चलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अवसर है, और मैं चाहता हूं कि अपन बहुत बहुत आगे रहे हैं, अपना भारत योग के लिए, योग का जनक है और हमसे लोग सीख रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे योग को अपना रही है, तो हम
1: जी
0: भी इसको दुनिया को एक मैसेज दें कि यह हमारी जो विद्या है, हमारी जो विद्या है, हम इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और इसी से लोग मोटिवेट हो और एक रोग मुक्त विश्व का एक मैप तैयार हो,
1: बिल्कुल आपने
0: है ना।
1: वसुधैव
0: आज
1: कुटुंबकम की
0: आप
1: जो भावना
0: देखो
1: है वो
0: विश्व,
1: बताई।
0: हाँ विश्व स्तर पे मानसिक प्रॉब्लम चल रही है लोगों के, डिप्रेशन की तो आप सुन ही रहे हो,
1: सुन
0: और
1: ही रहे हैं
0: इतनी इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही है, ये हो रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं सब कुछ, मतलब इतना हालत, इतना ज्यादा तनाव युक्त हो रखा है, तो इन चीजों के लिए योग का ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य हमें दे रहा है, और आप मानते हो कि स्वस्थ वही होता है।

0: शारीरिक हो मानसिक हो,
1: जी हाँ,
0: शरीर से स्वस्थ देखने वाला भी स्वस्थ नहीं है, है ना। शारीरिक जब आप शारीरिक मानसिक स्वस्थ होगे तो आप सामाजिक स्वस्थ बन जाओगे,
1: सही बात,
0: और तभी एक एक अच्छा परिवार, अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा गांव बनेगा अपना। तो इसी से चल रहा है। और फिर 21 जून को योग दिवस है, इसपे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे आपने नियरेस्ट लोक लेवल पे जितनी भी बड़ी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है, उनमें आयोजित होगा योग का कार्यक्रम, पर्यटन स्थलों पे भी योग का कार्यक्रम होगा, और जितने भी आयुष्मान मंदिर है उनपे योग का कार्यक्रम होगा। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने जैसलमेर जिले में जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनमें सब में योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं, वो प्रातः 12 महीने प्रातः रोज योग करवाते हैं, तो आप उनसे जुड़े, उनके संपर्क में जाएं, और इस योग दिवस पे तो आप जरूर ही पार्टिसिपेट करें और सीखें, और फिर उसको अपने व्यवहार में उतारें। और अपने जैसलमेर में भी ये इसका बहुत बढ़िया लेवल पे जिला प्रशासन के सहयोग से योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इसके लिए भी शहीद पूनम सिंह स्टेडियम सोनार किला और गढ़ी सर पे बहुत अच्छे लेवल से और पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित किए हुए योगा अभ्यासों का अभ्यास करवाया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े, मैं आपके माध्यम से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और उस दिन एक ना योग संगम पोर्टल खुला है, उसमें क्या करना होता है अपने को, योग संगम पोर्टल के लिए हमें उस पे पोर्टल को खोल के अपने को रजिस्टर्ड करना होता है
1: जी।
0: और रजिस्टर्ड करके जहां भी आपने जिस जगह करना है उस जगह का नाम दर्ज कर लिखना होगा। जैसे आप उसको खोलोगे, खोलते ही वो जगह मांगेगा, और योग वाले दिन 21 जून में उसमें 2 फोटो आप अपलोड करोगे, तो अब आपने योग किया है उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और दूसरा यह है कि विश्व लेवल पर अपने भारत में इतने लोग कर रहे हैं उसका ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड होगा। तो हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि जनमानस को योग के प्रति जागरूक बनाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग योग करेंगे। और अब की बार की जो अंतर्राष्ट्रीय 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम भी बहुत अच्छी है
1: जी।
0: योगा फॉर हेल्थी एजिंग, मतलब इतनी शानदार कि आप योग से जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा योग के प्रति डिवोटी हो। इसी मैसेज के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इनके सहयोग से राजस्थान में बड़े धूमधाम से योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो आप भी, मैं मैम आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने रेडियो के माध्यम से लोगों से इसमें ज्यादा से ज्यादा अपील करें
1: जी, और
0: रोज लोगों को बताएं, स्थान के बारे में मैंने बताया है, उनके बारे में अवेयरनेस करवाएं, और रोज प्रातः काल होने वाले योग के बारे में भी आप बताएं कि सारे ग्रामीण स्थलों पे भी योग हो रहा है, ये भी आप बताएं
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बातें बहुत सार गर्भित है, लेकिन क्या करें, हमारे पास थोड़ी समय की सीमा है, लेकिन चलते चलते एक और आपसे जानकारी लेना चाहते हैं सूक्ष्म रूप में कि आजकल ये लू पक्षा, ये जो है ना तापमान की वृद्धि और इसकी वजह से लोगों को घबराहट, बेचैनी, माइग्रेन, उल्टियां, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसका मुख्य कारण जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा सन स्ट्रोक में जाते हैं पर उससे बचते नहीं है। पर हमारे जो भाई बंधु हैं या कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्हें जाना ही पड़ता है, कितना भी आवरण अपने शरीर की लपेट लें, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से नहीं बच पाते, क्योंकि 8 बजे तक अगर लू चलती रहती है तो व्यक्ति पूरा दिन तो निष्कर्म भाव से घर पे नहीं बैठ सकता
0: जी।
1: तो उसके लिए ऐसे कोई जल्दी से हमें आपका, हम आपका बहुत सारा लाभ लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे योग के उपाय बता दें ताकि इससे आमजन को राहत मिले
0: जी। देखो मैं आपको बताऊं कि इसमें पहला तो मैंने बचाव के तरीके आपको पहले बताए हैं, दूसरा आप अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें, घर से निकलने से पहले आप लिक्विड में पानी, नारियल पानी, ORS आदि का घोल पी के जाएं, जिससे आप हाइड्रेट रहोगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आप लू से बच जाओगे। अगर किसी के लू लग गया तो लू मैनेजमेंट में तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि आप प्राथमिक स्तर पे अगर बेहोश हो गया तो आप नियरेस्ट जहां भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जहां भी उपचार के केंद्र है, वहां

0: उनको ले जाएं, उससे पहले आप उसको जो भी जिसके भी सन स्ट्रोक लगे हैं उनको उन कपड़ों को थोड़ा ढीला करके छांव की छांव में लेटाएं, पानी पिलाएं और उनको आराम करने दें, हवा की व्यवस्था करवाएं। यह तो
1: जी
0: इसका प्राइमरी मैनेजमेंट है।
1: जी
0: और इसके लिए अपने अपने आयुर्वेद में, अपने प्राकृतिक चिकित्सा में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूँ कि उसको बोलते हैं सत्तू।
1: अच्छा सत्तू का। हाँ
0: हाँ, और चने का सत्तू आपको प्रोटीन भी देगा, एनर्जी भी देगा,
1: जी
0: ठीक है। अब आप उसको बनाए कैसे, जैसे चने का सत्तू, चने भुने हुए चने, दाल मिलती है भुनी हुई,
1: हाँ हाँ
0: उसका सत्तू बनाया जाता है।
1: जी
0: उसको
1: हाँ
0: बारीक पीस कर उसमें मिश्री डाल लेते हैं शुगर की जगह,
1: ठीक
0: ठीक
1: है
0: है। और
1: जी
0: उस शुगर उसको मिलाकर, जैसे आप शाम को निकल रहे हो, जब भी आप बाहर निकलना हो तो 1-2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच मिश्री, उसको बढ़िया से मिला के मिक्स करके आप पी के बाहर निकले। और
1: बढ़िया।
0: अगर आपको जहां तक तो बचना नहीं बच पाए, नारियल पानी, जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, और मौसमी का जूस है, और अभी फलों का राजा आम का अभी सीजन है, जितने फ्रूट्स है, मतलब लिक्विड लिक्विड आहार
1: हाँ
0: आपको लेना है और ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाने से बचना है।
1: बचना है।
0: ये है तरीके आपको अपनाना है। फिर योग में आप देखो, योग में आप सुबह, आपने मैं बताया सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक के साथ, सूक्ष्म व्यायामों के साथ अपन योग स्टार्ट कर, योग करके बाद में शाम आराम से निकले और जिसकी लू लगी है उसको शीतली प्राणायाम करें, चंद्रवेदी प्राणायाम करें, चंद्रवेदी और शीतली। अब चंद्रवेदी में क्या होता है कि अपने बाई नासिका से सांस लिया जाता है और दाई से छोड़ा जाता है, और ऐसा 7 से 8 बार, मतलब 1-1 मिनट का गैप देके ऐसे 3-3 राउंड ये करें, शीतली प्राणायाम, जिसको अपनी जीवा को मोड़ के जीवा से सांस लिया जाता है और नाक से छोड़ा जाता है, ये भी 10 बार करें, फिर 2 मिनट रुकें, फिर करें, ये भी इसके लिए हीट मैनेजमेंट में बहुत शानदार और कारगर, बिना किसी साइड इफेक्ट का एक तरीका है, ये आप कर सकते हो।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इतना आसानी से आपने प्राणायामों के बारे में बताया कि ऐसा लगा कि बिल्कुल विजुअलाइज हो गया है। और निश्चित तौर पे हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो आपकी अर्थ सार गर्भित वार्ताओं से प्रभावित हुए होंगे और उनको इसका लाभ भी मिलेगा। आप कार्यक्रम में आए, आप हमसे जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी साझा की, युवाओं को मार्गदर्शन दिया, योग के पथ पे चलने का उन्हें आसान रास्ता बताया और उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए। इन सभी के लिए हम आकाशवाणी की तरफ से, अपने समस्त श्रोताओं की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको साधुवाद भी ज्ञापित करते हैं। जी
0: ओके,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आरोग्यम। यह आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है और FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, अब से लेकर साय 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ, बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है, एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल,
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में?
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। इन्हें जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है। तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का, और अब क्या करें।

0: तू नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा था ना कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र है या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: और सोनाली जी, यही आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक, हाँ, जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती तब तक। अब ये हमें पता नहीं था क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वे मुझे नेत्रदान करना है और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी

0: पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जी की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारी सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने. उन्होंने लिखा है नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें. मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है. इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे. आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं. तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके. और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके. और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां. और साड़ी ने जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है.
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में. और आज हम साड़ियों का संसार इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है. ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है. अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है.
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है. चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है. ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई. कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था.
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी. उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे. और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है. जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है.
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है. इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है. पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं.
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन. अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है. साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है. और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है. यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है. कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है.
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं.
0: क्या बात है?
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ. और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके. कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है. और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं. उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है.
0: क्या बात है. चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है. पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं. अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं. पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी. आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है. एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं.
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं. साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है.
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं.
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले.
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत.

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है,

0: छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम
0: है, बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा।
1: हाँ।
0: कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सबका सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ,
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोल के अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनकी खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे। और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: बाप रे, दिल की बातें निकल रही है सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बेटी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनकी गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझ कर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए,
1: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा तो उसे वो भी दो।
1: हाँ।

0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं इधर, हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद,
0: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत
0: समझदार
1: अच्छी बात।
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणिया है वो बड़ी खुश होगी, है ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया। वही
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं। इसलिए
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो होते उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे, और दोस्त सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतू, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछिए मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है, मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए, ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथ ही लिखते हैं, आपसी संबंध को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां, बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती है। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं
0: हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से। यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें,
1: गाना सुन लेते हैं। संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। चुपे चुपे तुम रुके रुके हम सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, होकर लगे ना संभालो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो तो हो, फिर जो हो तो हो। आए प्यार हो तो

जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो। कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो। वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा। बोलो बोलो अरे कुछ तो बोलो, दिल ना छोड़ो गुस्सा छोड़ो। अब तो निगाहें मिला लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। हाय।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें। बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भूनें जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी ही खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत
0: चाहिए।
1: हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंगिया चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च लहसुन हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान
1: स्वागतम आनंद मंगल मंगल प्रियम।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
1: देखिए, रेडियो से विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
0: रेडियो की तरफ,
1: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा पदस्थ रहा उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव एक रिश्ता बना रहा
0: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता ही जम जाए।
1: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
0: विविध भारती से
1: की स्मृतियां हैं मेरे
0: जी,
1: पास
0: जी। तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
1: जी।
0: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
1: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
0: जी,
1: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
0: जी।
1: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
0: जी।
1: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
0: जी जी जी।
1: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
0: क्या बात है।
1: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे,
0: अरे वाह,
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
0: जी।
1: या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाई चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
0: जी जी।
1: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
0: जी,
1: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं
0: जी।
1: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
0: जी।
1: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पर असर होता है तो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा,
1: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
0: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
1: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़

0: छल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, मैंने चिट्ठी खींच और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी को कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा होगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ
1: को 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाए।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाए हम सुकंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी।
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी बड़ी मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा। तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पर नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पर नासिर
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो हमने सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी
0: जी, जी,
1: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग

0: बुक स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी बड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, नाटक क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक,
0: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे रागों का उपन्यास। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूं, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी,
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई ये, मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी,
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है,
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी,
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। हाँ, उनका आशीष था।
1: जी,
0: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
1: जी,
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी है, इरशाद कामिल है, और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें

0: नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे
1: बड़े
0: उन्होंने
1: कलाकार
0: कहा
1: जी।
0: काम
1: कहाँ पर
0: किया,
1: था, किस हॉल
0: वेदा
1: में?
0: कुंभा थिएटर में,
1: अरे वाह,
0: अंधेरी
1: क्या
0: में।
1: बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ
0: नौ
1: है,
0: भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये प्रकाशित
1: मराठी में भी है।
0: हो चुकी है ये
1: जी,
0: पुस्तकें इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई
0: बंद
1: नाम,
0: कमरे, अलोई कबीर
1: लोई नामकरण कैसे किस
0: की
1: तक किस
0: पत्नी है उनका नाम है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनना है?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
1: जिंदगी
0: धूप
1: तुम गाना साया,
0: गाना साया।
1: साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की
0: जी,
1: आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी, क्या बात है। तो
0: हाँ
1: ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
0: हाँ
1: इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है ये, इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरी उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी तीन लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है,
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। तो ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर चार लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: तीन दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, तीन दिन, तीन बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए, पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

Tipo, é ele.

0: मलमल के कुर्ते पे शीतलाल नहार पाल खाए सैया हमारो।
1: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए।

0: जी हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है?
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हंट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हंट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे?
1: देखिए पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है, मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं नहीं,
0: यहाँ नकारात्मक है।
1: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
0: सृजन करने आए हैं। जी जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
0: नजरिया।
1: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
1: पहली बार देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
0: जी जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
0: इलाहाबाद की
1: अकेला ही डीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ
0: जी।
1: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
0: जी।
1: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा
0: जी।
1: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
0: जी। प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होती।

0: थे पत्रकार संपादक, बहुत जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाश है उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
0: जी।
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
0: जी।
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, एक स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
0: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के और स्टाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी, जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
0: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है? रचना
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
0: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन
1: उसके लिए
0: दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें

0: आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत धन्यवाद
0: नमस्कार।
1: सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नो सुनिश्चित करना और राजनीतिक स्तर मथे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और देश निर्माण में उमर नेतृत्व नो पहचान की दिशा में ये सु एक बड़ो बहुत बड़ो और मील तक पत्थर मोनियो जावी। दोस्तों अपोरी बातों यो ही चलती रहसे, उसे पहले सुनाऊ संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: साथियों आप भणो सुनसो चिराग खत्री, ऋषांक वंसल और मनीषा पुरोहित द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आइए सुनते हैं यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के तहत आयोजित रेडियो एट द रेट 90 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
5: आकाशवाणी एट द रेट 90 90

आकाशवाणी के गौरवपूर्ण इतिहास और उसकी स्वर्णिम यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के थे वाक्य को जीने वाली आकाशवाणी केवल एक रेडियो चैनल नहीं बल्कि भारत की धड़कन है। सन 1936 में एक छोटे से सफर से शुरू होकर आज यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। देश के सुदूर गांव से लेकर महानगरों तक आकाशवाणी ने हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। अब आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों के सफर के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी क्रम में आज हम यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल कार्यक्रम का आयोजन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जैसलमेर में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं राजकीय नर्सिंग कॉलेज जैसलमेर के नर्सिंग ट्यूटर ताराचंद जी इनखिया से

0: करना चाहूंगी कि वे दो शब्द कहकर सभी विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करें।
1: आकाशवाणी जैसलमेर की टीम को राजकीय नरसिंह महाविद्यालय जैसलमेर में पधारने पर बहुत बहुत मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के द्वारा यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के तहत हमारे राजकीय नरसिंह महाविद्यालय जैसलमेर के जो प्रशिक्षणार्थी है उनको प्रोत्साहन और आकाशवाणी के बारे में जानने के लिए जो अवसर प्रदान किया जा रहा है उसके प्रक्रिया में आपके माध्यम से आशुभाषण निबंध प्रतियोगिताएं और क्विज प्रतियोगिताओं का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे जो प्रशिक्षणार्थी है उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रसार भारती या यूं कहे कि आकाशवाणी के माध्यम से जो जानकारियां प्रदान की जाएगी या उनको जो बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन अपने माध्यम से किया जाएगा उनको लेकर के बहुत ही आपके माध्यम से जो महाविद्यालय में पधार कर इनको हमारे बच्चों को और ज्ञान में वृद्धि करने के उपलक्ष्य को लेकर के आपके माध्यम से जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए हम आप राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जैसलमेर के पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद है कि आप आगे और भी इस प्रोग्राम के साथ साथ आगे भी जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थियों एवं यहाँ के प्रशासन को इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे और प्रोत्साहन करने का जो जरिया है वो प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आशुभाषण प्रतियोगिता, उसके बाद क्विज प्रतियोगिता का और अंत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम आशुभाषण के प्रतियोगियों का परिचय करवा देते हैं। दीक्षा, खुशबू, चंचल, निर्मल, हरीश, फिजा खान, भवानी शंकर, राहुल खत्री, मूमल कंवर, सरिता। अब सभी प्रतियोगियों को इसके नियम बता देते हैं। सर्वप्रथम आप इस बाउल से विषय की पर्ची निकालकर उसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का बोलने का समय दिया जाएगा। समय शुरू होते ही आप अपने विषय पर आशुभाषण देना शुरू करेंगे और समय समाप्ति की घोषणा पर आपको अपना भाषण समाप्त करना है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं आवाज दे रही हूँ आशुभाषण के प्रथम प्रतियोगी दीक्षा को। जी हाँ दीक्षा, आपका टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग।
2: सुप्रभात, मेरा नाम दीक्षा है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर की छात्रा हूँ और आज मुझे आशुभाषण में जो विषय दिया गया है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्सिंग हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसमें हम मरीजों को केयर प्रोवाइड कराते हैं। नर्सिंग साइंस और हेल्थ केयर सिस्टम की ब्रांच है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्सिंग कहाँ से उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, जिसको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है, जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में इटली में। उन्होंने नर्सिंग की नींव रखी थी। नर्सिंग की नींव कैसे कहाँ से शुरू हुई वो बताएंगे। तो सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक क्रीमियन युद्ध जो कि 1854 में शुरू हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी थी, जिसमें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत सारे सैनिकों को केयर प्रोवाइड कराई थी। युद्ध में जो घायल हुए थे उनको केयर दी थी और प्रमुख रूप से जिस चीज पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ध्यान दिया था वो था सैनिटेशन, मतलब कि साफ सफाई। साफ सफाई पे ध्यान देने के बाद उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को ठीक किया था और उनकी इस पहल के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। नर्सिंग वहीं से उत्पन्न हुई थी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और आज के समय में हेल्थ केयर सिस्टम जो है नर्सिंग के बिना अधूरा है। और जैसे किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स पूरी बहुत बड़ा अहम किरदार निभाते हैं, उसमें नर्सिंग भी डॉक्टर्स के ही तत्पश्चात अहम किरदार निभाती है। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग को।
0: तो दीक्षा ने हमें हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में बताया। तो अगली आवाज जो है वो मैं देना चाहूंगी खुशबू को। जी खुशबू, आपका टॉपिक है नॉलेज सेव्स लाइव्स।
3: नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम खुशबू है और मैं नर्सिंग महाविद्यालय की एक छात्रा हूँ। आज मुझे जिस विषय पर बोलने का मौका मिला है वो विषय है नॉलेज ऑफ लाइफ। हमारी जो जीवन है उसके अंदर ज्ञान का क्या महत्व है? तो ज्ञान एक ऐसी कड़ी है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो, अगर एक प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज है तो आप हर एक फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। जैसे मैं एक नर्सिंग की महाविद्यालय की छात्रा हूँ तो मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज का क्या महत्व है उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो नर्सिंग के अंदर अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर एक प्रॉपर नॉलेज के साथ उसको प्रैक्टिस भी है, नर्सिंग के अंदर प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको नॉलेज होगा तो अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अच्छी स्किल डेवलप होगी, जिसके कारण आप अब रोगी को जल्दी से उपचार प्रोवाइड करवा सकते हो, उन्हें जल्दी से जल्दी उनके जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कर सकते हो और वह जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं। और जो नॉलेज है वो हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, विदाउट दिस हम अपने कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे कि अभी अब हर एक विषय के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं और उन टॉपिक का नॉलेज हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री इम्पोर्टेंस और उनकी क्या हम इस अपने लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज अगर होगा तो हम उसके अंदर अपना बेस्ट दे सकते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे एक आम मर्रा की ज़िंदगी हो, अगर हमें अच्छा ज्ञान है तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान तभी बनेगी जब हमारा अच्छा नॉलेज होगा, और नॉलेज इज़ द की ऑफ सक्सेस। जिसे हम नॉलेज को हम हमारी सक्सेस की एक की भी कहा जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज होगा हमें तो हम अपना उसमें 100% दे पाएंगे और हमारे जो गलती होने का जो चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। और नॉलेज हमें एक चीज़ से नहीं मिलता, नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। कुछ नॉलेज हमारे इनहेरिटेंट या फिर कुछ हमें ट्रेडिशनल, जैसे हमारे पेरेंट्स से, जो हमारी सोसाइटी है, हमें उनसे भी बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन आपको ये पता लगाना ज़रूरी है क्या वो ज्ञान सही है या गलत, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नॉलेज आपको अगर ऐसे लग रहा है कि वो गलत है, उसकी आप डीप स्टडी कर सकते हो, जिसके बारे में आपको पता चलेगा ये नॉलेज कितना आपके लिए सही है या कितना आपके लिए गलत है। आपको नॉलेज ट्रेडिशन मेथड से, आपकी फैमिली से, आपकी सोसाइटी से प्रोवाइड होता है, वो नॉट साइंटिफिक नहीं होता, लेकिन वो नॉलेज भी ज़रूरी है। जैसे कुछ बच्चों को अगर नॉलेज नहीं होता तो वो अपने डेवलपमेंट स्टेज कवर नहीं कर पाते हैं। अगर उनको सही से खाना, जो बेसिक मैनर्स है, उन चीज़ों का ही नॉलेज नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनको आगे जब लाइफ में जब कोई आगे जो प्रॉब्लम आएगी तो उनको उसमें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी और वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। तो अगर हमें कोई भी प्रॉपर चीज़ों का अगर नॉलेज है तो आपके सामने कोई भी कैसी भी स्थिति आए, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने, यानी कि उस सिचुएशन को कैसे आप डील कर सकते हो उस सिचुएशन के साथ, तो ये आपके लिए आसानी होगी। और मेरा विषय को मैं आज ही इस मैं अपने विषय को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।
4: तो खुशबू ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है हम हमारी लाइफ जो है वो सेव कर सकते हैं अपने नॉलेज के जरिए। अगला नाम लेना चाहूंगी निर्मल। निर्मल, आपका टॉपिक रहेगा एम्पैथी इन नर्सिंग केयर और आपका 5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
5: सुप्रभात, मैं निर्मल देवासी। आज आपने मुझे ये मौका दिया एम्पैथी इन नर्सिंग टॉपिक पे बोलने का, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नर्सिंग में एम्पैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वे काफ़ी परेशान होते हैं। उनके पेशेंट्स की स्वास्थ्य की व्यथा से बहुत परेशान होते हैं, तो उन्हें एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जिससे वे अपनी बात कह सकें, अपना दुख बांट सकें, क्योंकि पूर्वजों की रीत है कि दुख बांटने से कम होता है। उन्हें जो एक पार्टनर चाहिए दुख बांटने के लिए, वो प्ले करती है एक नर्स। नर्स एक एम्पैथी का पुतला है। नर्सेज पेशेंट्स को अपने सहज भावना, अपने बोल उच्चारण से एम्पैथी प्रदान करती है। वो एम्पैथी स्वास्थ्य को ठीक कर

0: आइडियल नर्स हमेशा ये चाहती है कि उसके पेशेंट हमेशा उसे अपनी बात बताएं, अपना दुख बांटें और अपनी हर होने वाली परेशानी को उसे खुलकर बता सकें। यदि पेशेंट नर्स को अपनी बात खुलकर नहीं बताएगा तो उसका उपचार में कई दिक्कतें आएंगी। यदि पेशेंट अपनी सारी परेशानियां नहीं बता रहा है तो डॉक्टर और नर्स उसे अच्छा उपचार नहीं दे पाएंगे और ना ही वह जल्द ही स्वस्थ हो पाएगा। नर्स एम्पैथेटिक होती हैं, सिंपैथेटिक होती हैं। वो पेशेंट्स को सिंपैथी प्रदान करवाती हैं, उन्हें एक आशा देती हैं कि ये जो है आपका स्वास्थ्य खराब होना एक चुनौती है, हौसले और इलाज से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इससे मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि अस्वस्थ होना कोई अंत नहीं, एक चुनौती है, इलाज और हौसले से जीत हमारी ही है। एम्पैथी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है नर्सिंग प्रोफेशन में। नर्सेज को हमेशा एम्पैथेटिक रहना चाहिए, इससे पेशेंट और उसके परिवार को एक मजबूती प्रदान होती है कि एक हमारे साथ कोई खड़ा है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारी फिक्र करता है और हमारे बारे में पेशेंट को जल्द स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर्स भी नर्स के बिना अधूरे हैं, क्योंकि केवल डॉक्टर ही एक बड़े हॉस्पिटल को चला नहीं सकते। नर्सेज पेशेंट के आने वाली हर जरूरत को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। नर्स की क्वालिटीज होती हैं कि आप एम्पैथेटिक रहें, सिंपैथेटिक रहें और पेशेंट के बारे में सोचें, उनकी पूरी देखभाल करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत के दो शब्द कहूँगा कि नर्सेज के बिना ना हॉस्पिटल चल सकता है ना मरीज ठीक हो सकता है। नर्सेज हॉस्पिटल की दिल और धड़कन जान है, हॉस्पिटल नर्सेज के बिना बेजान है। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, बहुत ही हम कह सकते हैं कि निर्मल ने बात जो कही वो बड़ी ही दिल को छू लेने वाली है कि नर्सेज के बिना जो है, नर्सेज के बिना हॉस्पिटल्स अधूरे हैं। बिल्कुल, अगर पेशेंट्स की सबसे ज्यादा केयर अगर कोई कर सकता है हॉस्पिटल्स में तो वो नर्सेज ही है। तो इस प्रतियोगिता का हम यहीं समापन कर रहे हैं और कुछ ही देर में आपको आपके परिणाम जो है वो मिल जाएंगे। तो अब हम यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के दूसरे चरण में चलते हैं, यानी कि क्विज प्रतियोगिता की ओर। सर्वप्रथम मैं क्विज प्रतियोगिता की प्रतिभागियों का परिचय करवा देती हूँ। टीम ए में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं प्रिंसी चौधरी, पूजा चंद्रकला, फिजा खान। टीम बी में है माया, मधु जांगिड़, मानसी, विमला। और टीम सी का नेतृत्व करेंगे भगवान दाधिच, सुनील, रमजान, पवन। टीम डी है चिराग खत्री, ऋषांक बंसल, हर्षित और मदद अली। तो सबसे पहले सभी प्रतिभागियों को इस क्विज प्रतियोगिता के कुछ नियम हैं वो मैं समझा देना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में कुल 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में प्रत्येक टीम से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और उसके बाद हम सेकेंड राउंड की ओर बढ़ेंगे। मतलब दूसरे राउंड में प्रत्येक टीम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। तीसरे राउंड में प्रत्येक टीम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न टीम ए के लिए, और आपको जवाब देने के लिए समय रहेगा 10 सेकंड का। पहला सवाल टीम ए के लिए, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? ए वसुधैव कुटुंबकम, बी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सी सर्व भवन्तु सुखिनः, डी राष्ट्र सेवा पर परम सेवा।
2: बी।
1: बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बिल्कुल, और ये आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। आकाशवाणी सभी के लिए, सभी के हित के लिए और सभी की खुशी अरे सभी के सुख के लिए शुरू से ही सोचते आ रहा है। अब दूसरा सवाल रहेगा मेरा टीम बी से, स्वतंत्रता पश्चात भारत में हुई हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ए तेल उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी दूध उत्पादन, डी मछली उत्पादन।
3: बी।
1: बिल्कुल सही।

0: जवाब बी गेहूं उत्पादन। अगला सवाल टीम सी की ओर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक माह आकाशवाणी पर आने वाले संवाद कार्यक्रम का नाम क्या है? ए देश की बात, बी मन की बात, सी जन की बात, डी विज्ञान की बात।
1: बी मन की बात।
0: बिल्कुल सही जवाब आपका। ये हर महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे प्रसारित किया जाता है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हित के लिए जो सोचते हैं करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं टीम डी की ओर। टीम डी का पहला सवाल है, 1983 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? क्वाई लॉयड, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर।
2: बी कपिल देव।
0: बिल्कुल सही जवाब आपका। अब हम फिर से बढ़ रहे हैं टीम ए की ओर। उससे पहले मैं स्कोर बता दूं कि सभी टीम्स ने सही जवाब दिया है और सभी टीम्स 10-10 पॉइंट के साथ एक साथ है। अब टीम ए से मेरा सवाल रहेगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी हृदय, डी वृक्क। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल समय के साथ आपने जवाब दिया, अगर कुछ पल और निकल जाते तो आपका जवाब मायने नहीं रखता, लेकिन बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब टीम बी के लिए मेरा अगला सवाल रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अगला सवाल टीम बी से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन।
3: असहयोग आंदोलन।
0: गलत जवाब। सही जवाब है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून जो था ब्रिटिश सरकार का, तो उसे तोड़ने के लिए जब दांडी मार्च जो किया था गांधी जी ने, उसी से ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के बाद अगला सवाल जो है वो रहेगा टीम सी से, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट, सी ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
2: ए।
0: बिल्कुल सही जवाब, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला सवाल टीम डी से, भारत में आकाशवाणी द्वारा विविध भारत सेवा का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1957, बी 1975, सी 1964, डी 1998।
2: ए 1957।
0: बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ टीम ए और टीम सी और टीम डी तीनों 20 पॉइंट्स के साथ, टीम बी आप 10 पॉइंट्स के साथ है, तो आगे अभी बहुत मौका मिलेगा, आप अच्छे से जवाब दीजिए। अब हम फिर से चल रहे हैं टीम ए की ओर। आपका सवाल है, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, सी हरिवंश राय बच्चन, डी ग्रेमी।
3: ए।
0: बिल्कुल सही जवाब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो निर्माता निर्देशक रहे और उन्होंने सबसे पहली मूक फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र वो उन्होंने बनाई और 1969 में इसकी शुरुआत हुई इस पुरस्कार की। और प्रथम जो पुरस्कार जो ये दिया गया वो देविका रानी यानी कि जो अभिनेत्री थी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला सवाल टीम बी के लिए, 1893 में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, वीर सावरकर।
3: ऑप्शन बी।
0: बिल्कुल सही जवाब, लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक को हम सभी जानते हैं और उनका उद्देश्य जो था ये गणेश उत्सव जो शुरू करने का, वो भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट करने के लिए था, ताकि सभी इसमें एकजुट होकर तैयार होकर स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट ले सके। अगला सवाल टीम सी के लिए, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कौन सी जगह मनाया जाता है? ए माउंट आबू, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी जयपुर।
1: बीकानेर।

0: गलत जवाब। सही जवाब है ए माउंट आबू। और इसमें जो है हम कह सकते हैं 2 या 3 दिनों का एक जीवंत उत्सव जो है वो मनाया जाता है, और इसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रोमांचक प्रतियोगिताएं होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में घूमर है और गैर नृत्य है, डफ नृत्य है, ये सब किया जाता है। रोमांचक प्रतियोगिताएं जो होती है उसमें नौका दौड़, घुड़ दौड़, स्केटिंग, रस्साकसी, ये सभी प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाती है। अगला सवाल रहेगा मेरा टीम डी से, गींदड़ लोक नृत्य राजस्थान के। अगला सवाल रहेगा मेरा टीम डी से, गींदड़ लोक नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर, जैसलमेर, सीकर, डूंगरपुर।
1: डी डूंगरपुर।
0: गलत जवाब। सही जवाब है सीकर, क्योंकि ये शेखावटी क्षेत्र जो है वहां पर ये नृत्य होता है। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वहां का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि होली के समय ये किया जाता है। होली के 15 दिन पहले ये शुरू हो जाता है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कि पुरुष जो है वो नारी की वेशभूषा धारण करते हैं और ये नृत्य जो है किया जाता है। अगला सवाल। तो इसी के साथ पहला राउंड समाप्त होता है और इसके बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार है, टीम ए है 30 पॉइंट्स के साथ, टीम बी है 20 पॉइंट्स के साथ, टीम सी है 20 पॉइंट्स के साथ और टीम डी है 20 पॉइंट्स के साथ। यानी कि फिलहाल टीम ए जो है आप इनके बराबरी तक आ सकते हैं, क्योंकि अभी 2 राउंड्स और बाकी हैं। तो रख हौसला कर फैसला कि मैं ही ये जीत हासिल करूंगा या करूंगी। चलिए अब हम अगला राउंड जो है वो शुरू कर रहे हैं, राउंड 2। जैसा कि हमने बता दिया था, इसमें भी आपसे 2-2 सवाल किए जाएंगे और प्रत्येक सवाल का जो उत्तर आप देंगे उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे, 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और राउंड 2 में सबसे पहला सवाल है टीम ए के लिए, द अब्रेविशन PRN means A before meals, B after meals, C as needed, D once daily.
2: सी एज नीडेड।
0: बिल्कुल सही जवाब, सी एज नीडेड। टीम बी के लिए सवाल रहेगा, द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज A 6.8 to 7.0, B 7.35 to 7.45, C 7.8 to 8.0, D 8.5 to 9.0।
3: ऑप्शन बी 7.35 to 7.45।
0: ऑप्शन बी 7.35 to 7.45। टीम सी के लिए ये सवाल, ए पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी इज केप्ट इन सुपाइन पोजिशन, फॉवलर्स पोजिशन, ट्रेंडल एंड वर्क पोजिशंस, प्रोन पोजिशंस।
1: बी फाउलर पोजीशन।
0: बिल्कुल सही जवाब, फाउलर पोजिशन। अगला सवाल टीम डी के लिए, द फर्स्ट पल्स फेल ड्यूरिंग CPR इज ए रेडियल पल्स, बी एपिकल पल्स, सी कार्डियोटिक पल्स, डी फेमोरल पल्स।
4: सी कैरोटिड पल्स।
0: बिल्कुल सही जवाब। अब फिर से हम चल रहे हैं टीम ए की ओर, और टीम ए का सवाल है, द कॉमन साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज डेल्टॉइड, बी एब्डोमेन, सी फॉरहेड, डी चेस्ट।
2: सी।
0: गलत जवाब। सही जवाब है एब्डोमेन। अगला सवाल टीम बी के लिए, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड फॉर पेशेंट्स इज ए जस्टिस, बी फेडेलिटी, सी बेनिफिशियंस, डी ऑटोनॉमी।
3: ऑप्शन सी बेनिफिशियल।
0: बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल टीम सी के लिए, विच पोजिशन हेल्प्स टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ए सुपाइन, बी लेटरल पोजिशन, डी सी ट्रेंडल एंगबर्ग, डी लिथोटॉमी।
1: बी लेटरल पोजिशन।
0: बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल टीम डी के लिए, द मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्टी इन सोलिंग इज ए डिस्पेगिया, बी डिस्पेनिया, सी डिसोरिया, डी एफासिया।
4: ए डिस्फेजिया।
0: बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ दूसरा राउंड यही समाप्त होता है और दूसरे राउंड के बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार है। राउंड टू में टीम ए के है 15 पॉइंट्स, टीम बी के है 30 पॉइंट्स, टीम सी के है 30 पॉइंट्स और टीम डी भी है 30 पॉइंट्स के साथ। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अब राउंड थ्री में, यानी कि लास्ट राउंड में, और सबके लिए ये मौका है बढ़त बनाने का। तो सोचिए और फिर अच्छे से जवाब दीजिए। चलिए और राउंड थ्री की शुरुआत कर रहे हैं हम, और पहला सवाल टीम ए के लिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी जयललिता, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुषमा स्वराज।
2: सरोजिनी नायडू।
0: गलत जवाब। सही जवाब है प्रतिभा पाटिल। टीम बी के लिए सवाल रहेगा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए लोहा, बी सोडियम, सी पीतल, डी तांबा।
3: ऑप्शन बी सोडियम।
0: बिल्कुल सही जवाब। टीम सी के लिए मेरा सवाल रहेगा, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए हीरा, बी ब्रास, सी आयरन, डी एल्यूमिनियम।
1: हीरा, ए ऑप्शन।
0: बिल्कुल सही जवाब। टीम डी के लिए सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ए 1934, बी 1922, सी 1911, डी 1913।
1: सी 1911।
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, 12 दिसंबर 1911 को जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में जो है इसकी घोषणा की गई थी। अब फिर से हम चल रहे हैं टीम ए की ओर। ये तीसरे राउंड के लास्ट सवाल है, तो प्लीज आप अच्छे से सोच समझकर जवाब दीजिए। टीम ए के लिए मेरा सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए सीपीयू, बी मदरबोर्ड, सी एसएमपीएस, डी यूपीएस।
2: सीपीयू।
0: बिल्कुल सही जवाब, सीपीयू। अगला सवाल टीम बी के लिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार।
3: ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार।
0: बिल्कुल सही जवाब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, हम सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। चलिए अगला सवाल टीम सी के लिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी।
1: ऑप्शन मत ए विटामिन ए।
0: बिल्कुल सही जवाब। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें रात के समय अंधेरे में बहुत धुंधला दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई देता है, इससे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए, और इसके अलावा फ्रूट्स भी है, आम पपीता, ये सब खा करके जो है हम हमारे इस रोग को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल टीम सी से, तो अगला सवाल टीम डी से, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ए 9, बी 4, सी 7 और डी 8।
4: सी 7।
0: बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ ये क्विज प्रतियोगिता समाप्त होती है और फाइनल राउंड्स के नंबर्स कुछ इस प्रकार है। फाइनल राउंड में टीम ए ने लिए हैं 20 नंबर और टीम बी को मिले हैं 40 और टीम सी है 40 नंबर के साथ और टीम डी भी है 40 नंबर के साथ।
5: यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के तहत अब हम चलते हैं निबंध प्रतियोगिता की ओर। जी हाँ, सर्वप्रथम इसके नियम में आप सभी को बता देना चाहूंगी कि सबके पास जो आंसर शीट जो है आपके पास रखी है, उसमें आप सभी अपना अपना नाम लिख लेंगे और आप सभी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। सबसे पहले मैं प्रतिभागियों का परिचय करवा देती हूँ। लक्ष्य राज, यशराज सिंह राठौड़, ज्योतिष सैनी, सरिता, कल्पना शेखावत, नीतू कंवर, मोनिका

0: ममता कुमारी, किरण शिवानी बाकोलिया, भूमाराम गंगा कंवर। तो आपके निबंध लिखने का समय शुरू होता है अब। सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अब आपके पास सिर्फ एक मिनट का समय शेष बचा है, तो आप अपने निबंध को अंतिम पड़ाव की ओर जल्द से जल्द ले आइए और अच्छे से अच्छे शब्दों में इसे अंत दीजिए। अब आपके निबंध का समय समाप्त हो गया है, तो अपने पेपर और पेन को आप विराम दे दीजिए और कुछ ही देर में हमारे पास निबंध प्रतियोगिता के रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसी के साथ यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल में आयोजित तीनों प्रतियोगिताएं क्विज, निबंध और आशु भाषण संपन्न होती है। आज यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनके परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले आयोजित आशु भाषण के विजेता रहे हैं। तृतीय स्थान पर है भवानी शंकर, दूसरा स्थान प्राप्त किया है खुशबू ने और प्रथम स्थान पर है राहुल खत्री। सभी विजेताओं को आकाशवाणी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो अब हम चल रहे हैं क्विज प्रतियोगिता के परिणाम की ओर। जी हाँ, क्विज प्रतियोगिता की विजेता टीम है टीम डी, और टीम डी के सदस्य हैं चिरा खत्री, रेशांक बंसल, हर्षित और मदद अली। आप सभी को भी आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। तो चलिए, अब तो निबंध प्रतियोगिता का परिणाम जो है वो भी हमारे पास आ चुका है और इसमें तीसरे स्थान पर है यशराज सिंह राठौड़, दूसरा स्थान पाया है कल्पना शेखावत और प्रथम स्थान के पायदान पर है शिवानी बाकोलिया। तो निबंध प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को भी आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज आकाशवाणी द्वारा राजकीय नर्सिंग कॉलेज में यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल के तहत आशु भाषण, क्विज प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को आकाशवाणी की तरफ से स्मृति चिन्ह, टी शर्ट और कैप देकर सम्मानित भी किया गया और इस कार्यक्रम में आए सभी विद्यार्थियों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विजेता प्रतिभागियों को आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर भी प्रदान किया जाएगा।
1: आकाशवाणी @90.90

अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आप अब सुन रहे थे यूथ आउटरीच इनिशिएटिव पहल 22 मई 2026 कार्यक्रम रा विजेता। दोस्तों, आप अब सुन सो हमें सुन सो जी को है बचत रा।

0: अब बचत करनो वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा और भविष्य के लक्ष्य नो पूरा करनो करण की कुंजी है और ए आपनो आपातकालीन स्थितियों से निपटनो कर्ज से बचनो और बिना तनाव रे जीवन जीवन में मदद करनो और आपातकाल जेड़ी कई अचानक बीमारी या नौकरी छूटने मथे बचाई गई धन राशि एक सुरक्षा कवच रो काम करे। और यदि आपरे पास पर्याप्त बचत है तो आपनो आपकी जरूरत और लिए महंगो लोन या क्रेडिट कार्ड मथे निर्भर रहनो पड़े। वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित होने से भविष्य की अनिश्चितताओं नो लेकर चिंता कम करे जिसके सु मानसिक शांति मिले। शिक्षा घर खरीदनो या शादी जड़ा बड़ा खर्चा आपकी बचत और सही निवेश योजनाओं के माध्यम से आप आसानी से पूरा किया जा सके। नियमित बचत और वे सु बैंक में जमा करने के लिए ब्याज मिले जिसके सु समय के साथ आपके कई गुना धन बढ़े। और वित्तीय अनुशासन की आदत आपकी फिजूल खर्ची सु बचावी और पैसों की सही कीमत सिखावी। साथियों अपोरी बातों यों ही चलती रह से वे सु पहले सुनाऊं संदेश।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आप अबार सुन रहे था सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में आलोकित घड़ी री सुइयों समय बतावे पे ये वास्ते आपरी दोस्त रेशमा न दो इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप समाचार संध्या।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 6:30 पर सुन सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा रात्रि 10:00। सुगम संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राही हम अपनी राहों के, विषय रहेगा डिजिटल इंडिया 2। इस कार्यक्रम के प्रतिभागी रहेंगे श्यामवीर सिंह, नेहा व्यास और प्रार्थना व्यास। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन सकते हैं शाम 7:00। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15। और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।
1: एपिसोड 93।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

लोचन भृंग। नृपन केरी खासानी सिनासी, बचन नखत अवली

सोषेव सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: जी मारी सभा में रंग भर जाओ जी मारी सभा में रंग भर जाओ जी
1: महाराज।

जियो रामा केसर तिलक लगाओ जी, महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा।

महाराज गजानन आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानन आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 6:40 पर सुनेंगे जिले की चिट्ठी और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के फोर लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
2: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा जाति यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे MNIT भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल FM ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और AI क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इसे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से BOT मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव V.श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HPCL रिफाइनरी के LPG और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक

टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच एफएसएल टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल

0: कपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जैसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, HPV वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटर डाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबो लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी तीनी। हर पचपदरा री तेल रिफाइनरी इनी महीना उत्पादन शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश माय सबो लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन देश की जनता रा मारी अगुवाई माय अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मारा बधाई संदेश माय प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल ने देश माय बदलाव लावण वालो जमानो बतायो। ई मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA री नई दिल्ली माय खास मीटिंग राखी छी। मीटिंग माय NDA गठबंधन रा सदस्य दला और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। ई दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावां सागे साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावण रा नजरिया रो जायजो लियो छियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई मीटिंग में शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी रमान माय आज एक प्रस्ताव

0: ಅವಕಾಶ ಸ್ಕ್ಯಾರರ್ ಮನ ಈ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಸಾರು ಬಥಾಯ್ತೀನಿ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಚ ಸೂಚನಾ ಪ್ರಸಾರಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾ ಖಬರ್ ನವೀಸಾನ ಇಂದ್ರಿ ಜಾಣಕಾರಿ ತೀನಿ. ವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೀ ಈ ಉಪಲಬ್ಧಿನ ದೇಶ ರೀ 140 ಕರೋಡ್ ಜನತಾರ ಭರೋಸಾರಿ ನಿಶಾಣಿ ಬತಾಯೋ.
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान.
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू माने कागज लेकर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है. मुख्यमंत्री खतमाए मांडियो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओली बढ़ रियो है. ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओरों आखा राज्य माए खास पूजा अर्चना कर खुशहाली रे कामना करी जी.
2: ओम तत्वागामि ब्रह्मणा वंदमान सदा जाति यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी.
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माय कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका हर तबका रा भला सारू काम कीनो है.
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है.
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ही राखी चिया. देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावां और संगठन नारी ओरों प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करने पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है. प्रगतिशील किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरिया ही देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली माए नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करन रो कार्यक्रम है. राष्ट्रपति भवन माए भेवन वाली ये मीटिंग रो खास मुद्दो 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है. मीटिंग माए उद्यमिता और कौशल विकास ने बधावो देवन और देश माए काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारा माए विचार करियो जावेला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है. वे आकाशवाणी परिसरों जैसलमेर रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला. इस आगे प्रदेश माए एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला. फिलहाल राज्य माए आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है. श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करण रो ही कार्यक्रम है. ये पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए रख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भेला. इरे जरिए देश माए लाडला 12 साल माए भया ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई जावेला. केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे जावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला. प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है. रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैनी आज जयपुर पथारिया. अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात राज जामनगर माए मारो पहलो एआई सक्षम डेटा सेंटर खोलन रो ऐलान कीनो है. ओ दुनिया रा सब बत्ती हलचल वाला डिजिटल बाजारा माए शामिल फैला जठे सामान और एआई जुड़िया बूता ने मजबूत बनावन सारू विश्व स्तर रो बुनियादी ढांचो मुहैया करायो जावेला. ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो.

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है। वह कहो कि घर ताई पाइपलाइन जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है। श्री पुरी कहो कि LPG कनेक्शन ने TNG कनेक्शन में बदलन री कोशिश करी जा रही है। केंद्रीय मंत्री कहो कि कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन री कोशिश कर रहा है।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन रा काम ने मंजूरी दे दी है। इन्हें करीब 1,359 करोड़ रुपये बत्ता खर्चों बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल माथे विकसित करियो चावेला। इन्हों नागौर और बीकानेर बीचे जुड़ाव बेहतर वेला। मालोत्रा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरी उत्पादन इन्हीं महीना शुरू होवन रा आसार है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो का इन्हों प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा आमदनी रा नुआ मौका बनेला। मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीका राखी जी मीटिंग माय पोल रहा है। वह कहो के HPCL रिफाइनरी रा LPG और दूजा उत्पादन ने बत्ता बत्ता काम ले उन्हों तय करियो चावेला। मुख्य सचिव बतायो के 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला। जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन राय कारखाना माए काल लाई लागन हुई मौताना मामला माए 1 ASI समेत 9 पुलिसवाला ने मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस इन हलका माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रियां और गोदामा ने सील कर दी ना। हादसा पाछे इन हलकाओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी जी। FSL री टीम मौकाओं नमूना भला कर मामला री जांच कर रही है। रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजो है। अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल HRMS आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रातेत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवासी चियो है। हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावा री परेशानियां आगी करण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो जावेला। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावा री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके निपटावन री कोशिश करी जावेला। रबे मौसम राज्यरा घनखर हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। श्रीगंगानगर चूरू पिलानी फलौदी बीकानेर और जैसलमेर माए 44-46 डिग्री सेल्सियस तापमान बीच लू रो घणो असर रहो। दूजिकानी दिल्ली और हरियाणा लाग्योड़ा राज्यरा कुछ हलका माए बादला मनबासा गए आंधी चाली। अलवर हनुमानगढ़ झुंझुनू और भरतपुर रा कई हलका माए बारिश हुई। मौसम विभाग बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए काल 14 जून ताई जोरदार बायरो बाजन सागे कठे कठे बादला ने गाज और बीजना ने चमक पीछे बिरखा वेवन रा आसार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून दीतवार ने विचार बतावेला। इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन लिराओ सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रजरिया ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवन वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माए प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला, न्यारा न्यारा कार्यक्रम माए शिरकत करेला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरा री तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन स्वरूप है वन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 110.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ले गेरा बाजतुरी हमला बेला अपना

गेरा बाधतुरी अमला बेला पला।

तो आप बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनियो। तो साथियों यहाँ है, आज को है 10 जून है, और 10 जून ना जो है विश्व नेत्र दिवस दिवस मनाया जाओ। ये मुख्य उद्देश्य है लोगों और मौजूद को मृत्यु के बाद नेत्रदान करने ये प्रोत्साहित करना, और कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लावण के प्रति जागरूकता फैलाना। नेत्रदान जो है मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानी जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग जो है पुतली खराब होने के कारण अंधेपन का शिकार हो जाओ, और दान की गई आंखों से जो है कॉर्नियो प्रत्यारोपण करके उरी जो है दृष्टिहीन व्यक्ति ना जिंदगी और रोशनी भी दी जा सके। मृत्यु के बाद केवल 6 से 8 घंटे के भीतर नेत्रदान करना जो है अनिवार्य हुई। अगर 6 से 8 घंटे के भीतर अपन नेत्रदान कर दो तो वो जो उरी आंखें है पुतली है वो किसी दूसरे व्यक्ति की जो है

उनको है रोशनी दे सके। नेत्रांश कई मरीजों ने फिर जो दुनिया देखने को मौको मिले जो को जो भारत में मोए एस एन मेडिकल कॉलेज आगरा में 400 से अधिक मरीजों ने सफल कॉर्निंग प्रत्यारोपण किए जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्र रो है लिंग या ब्लड ग्रुप रो है नेत्रदान कर सके। यहाँ तक कि जिन लोगों में चश्मों लगो हो मधुमेह या उच्च रक्तचाप की बीमारी हो वो भी जो है नेत्रदान कर सके। आँख निकालने की प्रक्रिया में सिर्फ 10 से 15 मिनट समय लगे और इस जो है चेहरे की सुंदरता में कोई भी प्रभाव को नहीं पड़े। नेत्रदान के लिए जो है आप मृत्यु से पहले नेत्रदान का संकल्प ले जा सके। यदि आप ये उद्देश्य से जुड़ना चाहे और आप नजदीकी नेत्र बैंक में पंजीकरण कराना चाहो तो ये लिए आधिकारिक रूप से दृष्टिहीनता को नियंत्रण रहे वास्ते राष्ट्रीय कार्यक्रम में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये प्रकार से जो है आज विश्व नेत्र दिवस है और इसमें आप संकल्प ले सको अगर आपको आपको अक्षर कहना दान करनी है तो आप कर सकें। तो आप आगे भी बड़े बात कर सो पहले सुन जो भी जाएगा लोकगीत।

ਸੁਣੀ ਅਰਦਵਨਤੀ

Sajipa.

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम राही हम अपनी राहों के। इस कार्यक्रम का विषय है डिजिटल इंडिया 2 और इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं श्यामवीर सिंह, नेहा व्यास, प्रार्थना व्यास। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है रामजीलाल मीणा ने।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: अरे सरला काकी, राम राम।
1: अरे ललिता बिटिया, आओ आओ।
0: अरे काकी, आप ये कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं?
1: अब देख तेरी काकी भी होशियार हो गई है।
0: अच्छा, तो जरा मुझे भी बताओ आप क्या कर रहे हो।
1: अरे आओ बेटी, हाँ जरा बैठ तो सही। हाँ, हाँ, पानी वानी पी, थोड़ा सब बताती हूँ। ले आ बैठ। और कैसी चल रही है बेटा तेरी पढ़ाई लिखाई शहर में?
0: काकी अब तो पढ़ाई का आप क्या बताऊं, अब तो पढ़ाई हर जगह मिलती है,
1: मोबाइल में, लैपटॉप में,
0: अब तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है।
1: हाँ बेटा ये तो सही बात है। अच्छा ललिता बिटिया, ये तो बता तूने वो जो परीक्षा दी थी ना तेरी नौकरी के लिए, उसका कुछ पता चला?
0: अरे काकी मैं तो वो परीक्षा दे चुकी हूँ, अगला फॉर्म भरा है परीक्षा का, उसी की जानकारी लेने के लिए इधर आई थी।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: यहाँ पर आप दिख गए। तो चलो काकी आप मुझे ये बता दो, आप कंप्यूटर तो चला ही रहे हो,
1: हाँ
0: तो
1: बेटी।
0: मैंने एक फॉर्म भरा था वीडियो का, तो उसके अंदर देखो ना मेरी क्या प्रक्रिया पूरी हुई नहीं हुई, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक बार आप खोल के देखो।
1: अभी बताती हूँ, अब तेरी
0: अब तो मेरी
1: काकी भी
0: काकी भी होशियार
1: कंप्यूटर में
0: हो गई
1: होशियार हो गई है। ले
0: है।
1: आप बैठ जरा, अभी
0: हाँ,
1: बताती हूँ। तेरा वो आईडी तो दे जरा मेरे को।
0: हाँ ये देखो ये पड़ा मेरे मोबाइल में। हाँ
1: हाँ ये देख बेटी, ये है तेरे स्टेटस, इसको फॉर्म भरा था ना तूने, ये
0: हाँ
1: देख
0: हाँ
1: इसका
0: काकी,
1: स्टेटस।
0: इसमें सब कागज जमा हो गए मेरे, देखो।
1: एक दो तीन, हाँ बेटा कागज तो तेरे सारे जमा है।
0: अरे आजकल क्या है काकी, सब कागज मोबाइल में जमा रहते हैं, कहीं भी फाइल ले जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा क्या पता कोई डॉक्यूमेंट मेरा इस फोन में ना हो और फॉर्म कोई अधूरा रह गया हो।
1: अरे बेटी यही तो फायदा है, हमारा देश देखो कैसी तरक्की कर रहा है। अब पहले तो सारे कागज यहाँ वहां उठा के ले जाना, कभी कोई कागज फट जाता, कभी मुड़ जाता, कोई गुम जाता, अब तो सारा का सारा सामान एक कंप्यूटर में है,
0: और कंप्यूटर के बाद में मोबाइल फोन में।
1: मोबाइल। अब मोबाइल भी तो चल तो फिर तो कंप्यूटर ही है बेटा। और देख कितना फायदा है, अब ये देख ये जो सारा लेखा जोखा, अब तू सोच रही होगी तेरी काकी को ये सब कहाँ से आया। तो बेटा इसके लिए सरकार विशेष प्रशिक्षण दे रही थी, जब मैंने
0: अच्छा
1: प्रशिक्षण लिया

0: अब बेटा ऐसा है कि तेरे काका तो रहे नहीं, अब सारा काम काज ये वो, और अब मुझे तो इतना याद रहता नहीं, तुझे तो पता ही है
1: सही
0: बेटा।
1: बात है।
0: अब इसमें सारा वो सब कुछ डाल देने से सब डेटा इसमें आ गया, तो अब मैं सुरक्षित हो गई बेटा।
1: तभी मुझे आश्चर्य हुआ, काकी और कंप्यूटर पे वही चौका चूला करती रहती
0: अरे
1: पूरे दिन।
0: चौका चूल्हा तो बेटा देखो एक गृहिणी की शोभा कह लो, चौके चूल्हे बिना थोड़ी चले है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना वो भी तो जरूरी है। अब तू भी तो देख कैसे नौकरी की तलाश कर रही है, ऐसे ही मैं भी कोई लोगों के छोटे मोटे काम कंप्यूटर के कर देती हूँ, और बदले में जो कुछ दे जाए तो ठीक, नहीं तो सेवा भाव से कर देती हूँ।
1: काकी आपका तो कहना ही क्या। अरे
0: अरे प्रकाश बाबू
1: नमस्ते
0: आइए
1: सर।
0: आइए
1: अरे
0: आइए।
1: ललिता बहन नमस्ते। मुझे लगता है कि आप तो कंप्यूटर, बस कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर के अलावा तो आपका कुछ काम दिखता ही नहीं। पर ललिता बहन बड़ी खुशी होती है कि जब गांव में और खासकर महिलाएं जब कंप्यूटर चलाती हैं तो सच में दिल खुशी से झूम उठता है। और
0: अरे क्यों ना हो प्रकाश बाबू, जब हमारे जो देश है और जो सरकार है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो भारत सरकार की जो प्रमुख योजना है ना, वो जिसका उद्देश्य है कि देश के कोने कोने तक उन्नत तकनीक पहुंच जाए और अर्थव्यवस्था को भी डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए, तो अब उसी में ये सारी चीजें आ जा रहे हैं। जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो फिर हम क्यों पीछे रहे।
1: अरे अरे प्रकाश काका, अब तो आपको ये बात कहें, हमारे गांव में तो बड़े स्पीड से नेटवर्क आता है इंटरनेट का। पहले तो आप देखते थे सभी घर में छत पे जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर बात करते थे, पूरे गांव को पता चलता था कि आज माँ ने अपनी बेटी से बात की है। अब तो इंटरनेट इतना तेज हो गया है कि देख लो काकी अपने घर में कमरे में बैठ कर काम कर रही है।
0: अरे जगह जगह लंबी लंबी लाइनें और कई सरकारी ऑफिस, तो अब जैसे बेटा तेरा फार्म भरा है ना, उसका ऑफिस गांव में नहीं हो तो एक इतना सा फार्म भरने के लिए भी शहर जावे पड़े रहे था, तो अब वो सब ना होकर सब वो क्या कहवे तुमको, इंडिपेंडेंट बन गए हैं।
1: काकी आपकी तो अंग्रेजी भी अच्छी हो रही है।
2: अरे बेटा देखो, जो आपने बात की ना कि हमारे गांव में जो स्पीड इतनी आ रही है इंटरनेट की, जब हमारा ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत हुई थी 2015 में, तो सरकार ने ये कोशिश की थी पहले तो कि हर व्यक्ति तक इंटरनेट कनेक्ट हो, हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया से जुड़े। अब डिजिटल इंडिया में जो दूसरा कार्यक्रम पार्ट टू शुरू हुआ है, उसमें सरकार बेहतर सुविधाएं जुटाने का काम कर रही है। यानी पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब जो हम कहें कि जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम गांव तक पहुंच चुका है, जहां नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा।
0: अब तो फर्राटे से चले हैं कंप्यूटर, पहले तो वो नेट की प्रॉब्लम, फिर वो घाए घाए घाए घूमता रहता, अब तो बेटा कोई दिक्कत ना आवे है, अब तो स्पीड इतनी अच्छी हो गई है
1: अब तो
0: कि फट से
1: कंप्यूटर
0: काम हो जावे,
1: चक्रा तेज दौड़ता
0: अब चक्रा तेज है।
2: और बेटा बताओ, अरे ललिता बहन देखो कि भारत की हम बात करें तो भारत आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा एवरेज खर्च करने वाला देश है।
0: अच्छा
2: और हम ग्लोबल जो वर्ल्ड की बात करें तो 21 GB प्रति व्यक्ति डेटा खर्च होता है, लेकिन भारत के लोग 32 GB प्रति माह डेटा खर्च कर रहे हैं। यानी बहुत आगे हैं हम।
1: हाँ बहुत
2: पर बेटा देखो, बात यह है कि डेटा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन डेटा यह खर्च किस में कर रहे हैं? हमारी असली तरक्की तो उसमें है कि हम बहुत सारे काम की चीजें सर्च कर रहे हैं, या कोई हम ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स, या कोई नौकरी के माध्यम से, जैसे कि आज कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये डेटा किस में खर्च हो रहा है देश की तरक्की उस पर निर्भर करती है। तो अब हमारे युवा हैं, हालांकि उनके पास मोबाइल है, डेटा भी उनके पास है, तो वो खर्च करें तो मुझे लगता है कि अगर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस डेटा का उपयोग किया जाएगा, ज्ञान के लिए उपयोग किया जाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा।
1: अरे प्रकाश काका आपको पता नहीं है, आजकल तो मोबाइल में रोजगार के लिए एक आईटी ऐप बना है, उस आईटी ऐप के अंदर जो भी युवा है उनको कौशल प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ये सभी उनको मिलते हैं।
2: हाँ अब देखो ललिता बहन, अभी भारत सरकार ने शुरू की है अपनी डिजिटल इंडिया 2,

0: अब जो 2015 में शुरू की थी और इसमें फर्क क्या है? अब
1: क्या
0: मेरा तो
1: फर्क है?
0: काम यह है देखो कि गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करना कि भाई अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सब कुछ सीख लिया, घर बैठे ही आप कंप्यूटर पे सारा काम कर लेते हो, चाहे फॉर्म भरना हो, खेती या कोई दवाई की जानकारी हो, या यूं कहें कि कहीं कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई योजना का लाभ लेना, तो सब कुछ आपके कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हो।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो प्रकाश बाबू। अरे ललिता बिटिया, ये जो आज मैं कर रही हूँ ना, मुझे पहले नहीं पता था कि सरकार इसके लिए प्रशिक्षण देती है और ये सब काम मैं खुद घर बैठे कर सकती हूँ।
2: अच्छा।
1: लेकिन प्रकाश बाबू ने ही मुझे बताया कि काकी ऐसा ऐसा है तो आप जाओ, और उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और अब मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ।
2: काकी, प्रकाश काका ने तो बहुत अच्छा काम किया।
0: और देखो मैं हूँ डिजिटल इंडिया पार्ट टू का एक अहम हिस्सा हूँ। अब देखो आपको पता है पहले एक कार्यक्रम चलता था कि एक बस आती थी गांव में, रुकती थी और बड़े बुजुर्गों को बुलाकर चौपालों पर उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय जब वो बड़े हो रहे थे या हमारे बुजुर्ग बच्चे थे उस समय स्कूलों में वो नहीं जा पाए किसी कारण।
1: प्रौढ़ शिक्षा करते थे वो?
0: बिल्कुल प्रौढ़ शिक्षा।
1: अब पहले कहां इतनी शिक्षा का प्रचार प्रसार था। और
0: तो लेकिन ये कार्यक्रम कुछ उसी तरह का, अब जो यूं कहें कि हमारे से पहले की पीढ़ी थी वो पढ़ी लिखी तो है लेकिन उस समय ये कंप्यूटर थे ना कि ये मोबाइल एंड्रॉइड भी नहीं थे।
1: अब तकनीकी ज्ञान शामिल हो गया इसमें।
0: तो अब उन लोगों को जो कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको डिजिटल ज्ञान नहीं है, तो गांव गांव जा करके मेरा काम है उनको इस डिजिटल तकनीक को उससे रूबरू कराना। अब देखो इसमें हम सेफली कैसे अब इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि शुरुआत हुई एक फोन होता था नंबर वाला, हमारे बड़े बुजुर्ग फोन तो होता था लेकिन नंबर लगाना नहीं आता था, किसी बच्चे को बोलते थे वो नंबर लगा के देता, क्योंकि बच्चे आधुनिक थे उनको वो टेक्निक पता थी, है ना। तो अब जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और बेहतर, अब एंड्रॉयड फोन आ गए, सारी टेक्निक उसके अंदर आ गई, अब कंप्यूटर आ गए, हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, तो अब क्या करेंगे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अपने घर पर बैठकर ही अपना सारा काम कर सकें। अब देखो गांव में क्या काम होते हैं, अब गांव में तुम हो तो तुम्हारे से बेहतर क्या कौन जान सकता है कि गांव के लोगों को क्या क्या जरूरतें रहती हैं। ललिता बहन बताओ क्या क्या जरूरतें रहती हैं गांव?
1: अरे रमेश प्रकाश,
0: हाँ,
1: अरे प्रकाश काका, गांव में तो कई काम होते हैं, जैसे बापू कृषि करने जाते हैं तो कृषि के लिए क्या क्या सुविधा मिलती है आजकल तो ये मोबाइल में आ जाता है, किसी को पैसे देने होते हैं तो वो UPI कर लेते हैं, और आपको तो मालूम ही है गांव में शिक्षा का इतना प्रचार नहीं है तो आजकल तो मोबाइल ऐसा हो गया है या लैपटॉप और मोबाइल से बच्चे गांव में बैठकर शिक्षा की कोचिंग ले लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सबकी जमीन का लेखा जोखा भी तो रखो जावे है।
0: अच्छा ललिता बहन, जैसे कि गांव में आपको कोई लोन लेना है और आपकी जमीन, पहले क्या करते थे जमीन के डॉक्यूमेंट्स हमको पटवारी से जाके निकलवाने पड़ते थे, कितनी जमीन है उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ती थी। अभी क्या है, जो जितने भी अभिलेख हैं हमारे गांव के, चाहे आपका घर हो, डिजिटल पट्टा बन गया है, ऑनलाइन जाओ, अपना आधार कार्ड से अटैच भी हो गए सारे, और एक मिनट के अंदर आपकी इसको फोटोकॉपी निकाल लो और बैंक में जाके ये प्रॉपर्टी हमारी, इस पे लोन दे दो।
1: बिल्कुल सही,
0: लोन की जानकारी भी
1: ना
0: आपको,
1: किसी से मिन्नत करनी और ना कोई धोखाधड़ी कर सके, काम भी पूरो ईमानदारी को।
0: हाँ, अब देखो आप खेती करते हो तो खेती में क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है वो सारी योजनाएं भी आपको मिल जाती है। अब कितनी सब्सिडी मिलती है, जैसे कि आपको सोलर लगाना है तो सोलर पे कितना खर्चा आपको देना है, कितना बैंक से लोन मिलेगा और कितना सब्सिडी मिलेगी। और दूसरा आपको जो सरकार यूं कहें कि खेती के लिए, जैसे कहते हैं ना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करती है, एक साल के लिए मुफ्त ब्याज मुफ्त जो ऋण मिलता है ना, और आपके क्रेडिट कार्ड पर कितना लोन है, कितनी किस्त है, आप पूरी डिटेल कितना पैसा भरा है एक मिनट में आप निकाल सकते हो।
1: सही
0: अब,
1: कहा आपने।
0: अब इसके अलावा गांव के लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आती थी कि जैसे कि पेंशन वाले हैं तो उनको अपना पेंशन लेने जाना पड़ता था और अपना जो यूं कहें कि जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता था, और बच्चों को अपने सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट है, किसी को कास्ट की सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती थी,
1: बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं,
0: और किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पड़ते थे। अब ये सारे आप घर बैठे ऑनलाइन सारा सब कुछ हो चुका है। तो डिजिटल इंडिया जो

0: मिशन टू है उसका मकसद ये है कि सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। अब ललिता बहन, जब ये तो हमारी जो बिटिया है अभी तो पढ़ाई कर रही है, अच्छा बिटिया कई बार ऐसा होता था पहले, अभी तो नहीं हो रहा, कि हम जो डिजिटल काम करते थे कंप्यूटरों पर या तो कोई साइट पे फॉर्म भर रहे थे तो क्रैश हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते थे। तो सरकार ने फैसला किया है कि अभी तो सब लोग जुड़ेंगे ना तो इस पर लोड भी बढ़ेगा, तो नई टेक्निक से इसको जोड़ा जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट मिल गया तो अब हाई स्पीड के हमें कंप्यूटर भी चाहिए।
1: अरे ब्रॉडबैंड हाईवे,
0: हाँ ब्रॉडबैंड हाईवे भी एक योजना इसके अंदर अगर चल रही है। और दूसरा मैं बताऊं, जब तक हमारे पास हार्डवेयर हाई स्पीड का नहीं होगा तब तक हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड का हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने एआई आधारित क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत इस योजना में की है, यानी आने वाले समय में जो हाई स्पीड कंप्यूटर है वो सभी के पास होंगे। और जितनी सुविधाएं जो कहीं के डिजिटल इंडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाई जा सकती हैं, सरकार का मिशन है। चाहे कि आपका यूपीआई के माध्यम से आपके पैसे इधर से उधर हो रहे हों, किसी के खाते में डालने हों, या यूँ कहें कि आपके बैंक अकाउंट्स चेक करने हों, आपकी सर्विस रिकॉर्ड चेक करना हो, आपके अभिलेख चेक करने हों, गाँव के अभिलेख चेक करने हों, और आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करने जा रही है वो सब योजनाएँ आपको घर बैठे मिल सके।
1: बिल्कुल सही भाई, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी कामकाज और सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाना, उनको ज्यादा से ज्यादा कुशल बनाना।
2: काका आपको मालूम है एक डिजी लॉकर करके ऐप होता है, वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही चालू हुआ है। उसके अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और भी जो कई डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर वो सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वो मान्य भी हैं। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में जो राष्ट्रीय पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है, तो इसमें जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं वो मिशन मोड में चल रही है। इसमें कृषि भूमि अभिलेख, स्वास्थ्य, शिक्षा, पासपोर्ट, पुलिस, न्यायालय, नगर पालिकाएं, वाणिज्य कर, कोषागार आदि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो ये जहां पर पब्लिक का सीधा जुड़ाव होता है वहां पर तो ये टेक्नोलॉजी हमको लाभकारी हो ही रही है। और खासकर हम बात करें, जैसे कि हम ट्रेवल करते हैं, हमें जब टिकट लेनी होती है हमारी ट्रेन कहाँ है कब पहुँचेगी, तो आपका जो परिवार का सदस्य है आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो घर बैठे जानकारी मिल जाएगी, टिकट आप अपने ऑनलाइन ले सकते हो। तो और क्या क्या चीज़ें अभी आने वाले समय में सरकार जो इस योजना के तहत आपको देने वाली है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। और बेटिया मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके जो मुख्य 9 उद्देश्य हैं आपने वो पढ़े होंगे है ना, तो उनमें क्या क्या शामिल है थोड़ा आप भी बताइए।
2: देखो काका, डिजिटल इंडिया के मुख्य 9 प्रमुख स्तंभ है। सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। कहीं पर भी बैठकर गांव में हम इंटरनेट के माध्यम से उसकी सुविधा ले सकते हैं।
1: वरना पहले गांव में, दूर दराज गांव में इंटरनेट नहीं आता था, कंप्यूटर तो आ गए थे, नेट चलता नहीं था।
2: हाँ काकी, और दूसरा स्तंभ सुनो, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल। मोबाइल नेटवर्क की पहुंच को देश के कोने कोने तक सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। मोबाइल के जरिए हम अपने देश के किसी भी कोने में अपने गांव की सूचना पहुंचा सकते हैं।
1: अरे तभी तो सारे काम सुचारू चलेंगे ना।
2: हाँ काकी, और तीसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या होता है काका, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इंटरनेट की सार्वजनिक उपलब्धता हो जाती है, सबको इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अब वो कोई पासवर्ड वाला जमाना गया कि तू पासवर्ड दे तो इंटरनेट चालू करूं। हाँ काकी, और काकी ई गवर्नेंस, ये भी अब अपने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस का मतलब बताऊं?
1: अरे अभी तो बताया प्रकाश बाबू ने,
2: सरकारी प्रक्रियाओं को सुधारना और तकनीक के माध्यम से सेवाओं में पारदर्शिता
1: लाना।
2: इसमें कोई चिटिंग नहीं होती है, कोई नकल वगैरह नहीं होती है। और इसी के आगे हमारा स्तंभ है ई क्रांति। काका ई क्रांति तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको।
0: बिल्कुल,
2: इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्याय और भी कई क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जो मिलती है इसके अंतर्गत हमें। और छठा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन। काकी ग्लोबल इंफॉर्मेशन बताओ क्या होता है, आप भी तो कंप्यूटर चलाते हो।
1: बता बता बेटी, मुझे तो पता है।
2: सभी नागरिकों की सरकारी डेटा जानकारी जो भी हमें ऑनलाइन चाहिए वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं, किसी के भी हम निकाल सकते हैं, समझे।
1: लेकिन उसके लिए आईडी पासवर्ड चाहिए, कोई भी किसी की जानकारी न निकाल सके।
2: आजकल काकी नाम भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, अगर हम आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, उसको दबाते ही वापस नए पासवर्ड बन जाते हैं। और इसके अलावा रोजगार के लिए भी एक आईटी बना हुआ है। ये जो युवा हमेशा रोजगार के लिए पहले खोजते रहते थे ना कि अब कौन सा रोजगार करें, किस में जाएं, कौन सी लाइन पकड़ें, तो अब इसके लिए भी हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर एक सुविधा आ गई है। ये भी एक कह सकते हैं यानी पक्का स्तंभ है, युवाओं को कौशल प्रदान करने की सूचना मिलती है कि कौन से युवा किस कौशल को चुनते हैं, और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी ये नए नए रोजगार के अवसर देते हैं युवाओं को।
1: अब अपनी जो भी अपना कौशल है उसके हिसाब से अपना मनपसंद रोजगार चुन सके
2: और उसके अंतर्गत पढ़ाई कर लो। आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन मिलती है। इसी के साथ अगली और लास्ट हमारा नवा स्तंभ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत काका क्या होता है, सरकारी स्तर पर त्वरित परिणाम देने वाली परियोजनाओं को लागू करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब देखो प्रकाश बाबू कितनी सयानी हो गई हमारी ललिता बेटिया, देखो कितनी जानकारी है इसमें।
2: और इसी के साथ एक गांव गांव इंटरनेट भी हो गया है डिजिटल भारत में।
1: इन सब के बाद एक बात मैं बताऊं ललिता बेटी, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगे ये डिजिटल जो सब काम काज आजकल हो गया है ना, इसमें है भाषिणी जो सारी भाषाओं में अनुवाद कर सके किसी भी चीज का।
2: तो सब किसी अन्य की भाषा समझ में नहीं आए तो हम उसको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में,
1: जिस भी प्रांत की जो भाषा हो तो उसमें वो उसको अपने आप उस भाषा में कन्वर्ट करके और सब लोग अपने अपने काम के लिए उसे यूज कर सके।
0: और इसमें ललिता बहन हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सबको शामिल किया गया है। अभी आप किसी भी राज्य में जाओगे आपको उस अपनी जो भाषा उसमें बोलिए और सामने वाले को उसकी भाषा में सुनाई देगी, तो ये पूरे भारत को जोड़ने का कार्य करेगी। और मैं बताऊं एक चीज और भी है,
2: बताओ
0: हमारे
2: काका?
0: छात्र इंजीनियर्स के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप। अगर कोई छात्र कोई नई खोज करता है, नया परिणाम देने में सक्षम है या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसको सारी जानकारी और सारी सुविधाएं उसको देने का कार्य सरकार करने जा रही है।
1: अच्छा, और तो और साइबर सुरक्षा भी इसी में आवे बेटा।
0: हाँ ललिता बहन, ये तो आपने बहुत
1: कितनी महत्वपूर्ण बात है प्रकाश बाबू। मने यूं लागे कि आजकल की युवा पीढ़ी है ना जोश में ज्यादा रहवे, भाई हमें सब पता है, हमें सब आता है, और वो क्या कहवे बेटा उसको, ओवर कॉन्फिडेंस में रहवे, तो कई बार बच्चों से भूल हो जाए, गलती हो जाए, या मान लो गलती से कोई किसी को पेमेंट कर दिया जल्दबाजी में, तो ये सब ना हो इसके लिए टाइम टाइम पे सरकार जो है वो साइबर सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षण देती रहे है और जोर देवे विशेष रूप से कि किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएं, अपनी डिटेल्स किसी को ना बताएं, वही साइबर सुरक्षा भी तो जरूरी है।
2: अरे काकी साइबर सिक्योरिटी की तो आजकल डिग्री मिलती है, पढ़ाई करते हैं बच्चे।
1: अच्छा,
2: इसकी भी जैसे बीए बीएड बीए एलएलबी जैसे बीए के साथ में साइबर सिक्योरिटी की भी पढ़ाई होती है, इसमें हमारे साथ कोई धोखा नहीं
1: बेटा, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके घूमे फिरे ना, तो अब उसमें साइबर सिक्योरिटी की जानकारी तो जिस भी इंसान के हाथ में मोबाइल है या डिजिटल काम काज है, कंप्यूटर है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या यूज करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है और कितनी देर तक हमें इसका यूज करना है। ये सारी बातों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा।
2: तो इस डिजिटल इंडिया के बारे में मुझे एक लाइन याद आ रही है।
1: अरे बोल बोल बेटी।
2: अरे काका, इसके बारे में तो हम ऐसा कह सकते हैं, कागज हटाओ, मोबाइल बढ़ाओ, दलाल भगाओ और सुविधाएं घर लाओ।
1: अरे वाह।
0: और सबसे अच्छी बात बिटिया, सरकारी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई में बहुत कमी आई है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जैसे हमने कहा कि हमको इसका साक्षर होना बहुत जरूरी है और हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे हाथ में डिजिटल इंडिया है इसमें हमारे लिए नुकसान क्या है और फायदे क्या, कुछ नुकसान जो के फ्रॉड करते हैं लोग, उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी पहली बात है कि कई बार देखो ऐसे आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं होती हैं, कहीं किसी का फोन आ जाता है कि मैं पुलिस या थाने से बोल रहा हूँ, सीबीआई या किसी से बोल रहा हूँ, तो वहां पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं।

0: क्योंकि सबने विभागों ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कई ऐसी घटना किसी परिवार वाले के साथ हो जाती है तो फोन पे भला कौन बात करेगा, फोन पे तो जल्दी वो पकड़ में आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: प्रकाश बाबू,
0: बिल्कुल निश्चिंत रहे, एक तो इस डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उससे ऐसा कोई फोन आता है फ्रॉड तो उससे घबराए नहीं, और नजदीकी जो हमारी साइबर सेल बन चुकी है थानों के, वहां पर सूचना दे सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब दूसरा कि यूपीआई जो पेमेंट होता है, अक्सर कोई क्यूआर कोड भेज देते हैं कि आप इसको स्कैन कर लो, या कोई लिंक आ जाती है, तो बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर कभी क्लिक ना करें। और यूपीआई का जो जो कहें कि कोड वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर कोड, तो उसका देखिए हमें पेमेंट करने के लिए उसको करना पड़ता है, ना कि रिसीव करने के लिए।
1: काका ओटीपी नहीं बताया जाता किसी को।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: ओटीपी भी हमको कभी अपने मोबाइल में आए अगर कोई, तो किसी को नहीं
1: शेयर
0: शेयर
1: नहीं
0: करना।
1: करना।
0: अब जो हमारी जो एक चिंता है वो सबसे बड़ी है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी निजी जो जानकारियां हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो भी जानकारी आपकी जो है वो सारी सुरक्षित है और वो कहीं किसी भी प्रकार से लीक नहीं होगी। देखिए जब हमारी जानकारी सेफ रहेगी, हमारे पासवर्ड, हमारी जमीन लेखा जोखा जो भी है, हमारी प्रॉपर्टी सब वो बाहर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसमें से कोई निकाल ले आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा ले। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सुरक्षित है, डेटा कभी कहीं नहीं जाएगा। तो इससे क्या लोगों में विश्वास बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया की तरफ रुझान और बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही प्रकाश बाबू। और यही नहीं, मैं तो रोज देखा करूं कि अब आजकल जैसे जैसे लोग कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं ना, डिजिटल काम का सीख गए गांव में, तो कृषि और ग्रामीण विकास में भी कितना फायदा मिला है। अब जैसे किसानों को जो स्थानीय भाषा में अपने वो है ना, वो एआई आधारित सलाह, मौसम की जानकारी, वो सब घर बैठे मिल जावे है। अब पहले कहाँ पता चलता था भाई बारिश आएगी आएगी, उसके भरोसे किसान सदियां निकल जाती थी कि अब बारिश आएगी, कब मानसून आएगा, और कभी कभी तो पता ही नहीं चलता था और बाढ़ आ जाती थी।
2: अरे काकी, अब तो एक हफ्ते की मौसम की जानकारी हमारे फोन में आ जाती है, एक दिन
1: हाँ
2: की नहीं।
1: बेटा, कितनी सुविधा हो गई है।
0: और ये जानकारी सटीक होती है, सही होती है, और इसका फायदा पूरे सब गांव वालों को, मछुआरों को, तटीय क्षेत्र के लोगों को, सबको मिल रहा है।
2: वो सावचेत हो जाते हैं पहले से ही, अगर आंधी आ रही होती है तो उस हिसाब से काम करते हैं, बारिश आती है तो उस हिसाब से।
1: और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो तो टेली मेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और ये सब भी तो उसी पे आधारित है, तो उसमें भी तो मार्गदर्शन मिल जाया करे।
2: हरी काकी, कोई दवाई का नाम हमें समझ में नहीं आता, हम तो जल्दी से मोबाइल में दर्ज करते हैं और उसकी पूरी जानकारी
0: बारे में तो पता ही होगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड रखता है।
2: हाँ, आभा ऐप में तो हमें हमारे स्वास्थ्य की जानकारी भी मिलती है और उस स्वास्थ्य हमें क्या बीमारी है उसकी दवाई का नाम भी दे देते हैं। परामर्श भी मिलता है काकी, उसमें एक डॉक्टर बैठते हैं, आपको पता है।
1: सही बेटा, बिल्कुल सही। और देखो सरकारी योजनाएं कौन कौन सी नई जुड़ी है, पुरानी कौन सी योजनाएं हैं, किसका कौन कौन व्यक्ति लाभ उठा सके है, कौन उसके अंतर्गत आवे है, ये सारी जानकारी अब ना तो किसी से पूछने जाना पड़े और ना कोई बक्कल को कोई गलत बता देवे, कोई भूल जावे, तो अब ये सारी जानकारी हमें इसी पर उपलब्ध है घर बैठे।
0: आप कुल मिला के बात करें बहन और बेटा, देखो कि डिजिटल इंडिया जो 2 कार्यक्रम है वो हमारे देश में एक डिजिटल क्रांति, और यूं कहें कि संपूर्ण सभी लोगों तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहुंचे, हाई स्पीड इंटरनेट सभी जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जुड़े, और भारत को जो दुनिया में एकदम योकर विकसित भारत जो की तरफ बढ़ रहा है, और हम भारत के लोग सब मिलकर के डिजिटल इंडिया का फायदा उठाएं। जो भी सरकारी योजनाएं, अभिलेख, जो भी सुरक्षित सरकार ने करवाए, उनको घर बैठे आप उन आपका एक्सेस है और वहां पर जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो अब आपको सरकारी कार्यालयों और अन्य जगहों पर जाने के बजाय अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल इंडिया के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो आप आपकी पहुंच है, उन सब का लाभ आपको मिलेगा। और सच में हमारा तो काम है कि जैसे आप एक गांव में आपके जैसी एक बहन भी तैयार कर दी, तो वो पूरे गांव को डिजिटल

0: दिया टू
1: बिल्कुल सही प्रकाश बाबू,
2: मेरे तो संपर्क में जो जो आवे हैं उनको जितना मुझे नॉलेज है उतना देती जाऊं। और ललिता बिटिया तू भी ये करे बेटा, जो जो तुझे मिले, जिसको नहीं ज्ञान हो भाई डिजिटल इंडिया के बारे में या ये जो ऑनलाइन कामकाज है इसके बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा जानकारी सबको देना अच्छी बात है। हाँ काकी, अब तो कागज और लाइनों का समय गया।
0: अरे तो ललिता बहन और बेटा, अब दूसरे गांव भी जाना है, दूसरे गांव के लोगों को भी बताना है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: अच्छा अच्छा प्रकाश बाबू, राम राम राम राम
0: राम राम।
3: आजादी का अमृत महोत्सव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राही हम अपनी राहों के। इस कार्यक्रम में आज का विषय था डिजिटल इंडिया 2। इस कार्यक्रम के प्रतिभागी थे श्यामवीर सिंह, नेहा व्यास, प्रार्थना व्यास, और इस कार्यक्रम का निर्देशन किया था रामजीलाल मीणा ने। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

विशाल भारद्वाज के गाए फिल्म दिल तो बच्चा है के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत।

मोहब्बत है मुझको ये कहने में उनसे जमाने लगे हैं, ये कहने में उनसे।

0: बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता है। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उड़ान क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा किसी सरकार का नहीं रहा किसी दल का नहीं रहा देश के जन जन का सपना बन चुका है संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूट चक्र से आजाद हुआ है
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved, praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.
5: It is a historic tribute to India's longest-serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor. And our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us have constantly keep it in mind.
3: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected prime minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister in consecutive terms. With 4,399 days of continuous service as an elected Prime Minister, Mr. Modi has surpassed the previous record held by former Prime Minister Jawaharlal Nehru, who served for 4,398 continuous days. Meanwhile, the Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.
6: आज कैबिनेट में 10 फैसले दिए गए.
7: Two decisions were taken in today's cabinet meeting. One decision concerns the expansion of the Ahmedabad metro, while other two relate to Amravati, the new capital city being developed in Andhra Pradesh. The cabinet approved the Ahmedabad metro phase 2A corridor from Koteshwar Road to the airport in Amravati. Several central government offices will be brought together in a single complex. Two projects have been approved for this purpose: a residential complex and an office complex.
6: So residential complex or office complex?
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme. With a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees, the approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparel, MMF fabrics, and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, Barasal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards empowerment of the youths.

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: हरिहरन और अलका याग्निक के गाए फिल्म अलबेला के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है।
1: नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थक्षेत्र, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहाँ भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स है बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली के प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहाँ पे स्ट्रेटेजिक विषय है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
2: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा

0: हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी है कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको यह अधिकार दिया है कि वो बिफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, तिरंगा चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्युनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, अब जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसानों को लेकर, कैसे धीरे धीरे करके अपना किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो है, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, या दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए,

0: कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की उसके साथ साथ जो नई तकनीक है जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसके एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून कर ली गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेहड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है, खुले पैसे के लिए पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है, सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के

0: तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, आप हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीजें जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यदि कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे। ये सारी चीजों देखते से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते हैं उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारी चीजें देकर आज देखो यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट में विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मोदी है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर शिक्षक की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है इतने डेवलप्ड है भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं जो भारतीय मूल के जो लोग हैं प्रवासी भारतीय हैं उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में प्रयास किया है, भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए। आपने जिक्र किया अभी अगले हफ्ते ही जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा उन्हों मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी

0: वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमें उसको चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शिखर जी आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्ण अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं कार्यक्रम इस समय तुम्हें बहुत संक्षेप में?
2: बिल्कुल विकसित भाव तो सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किए जा रहे हैं, जो भी नए निश्चित लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देवानंद जी मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शिखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

सीमा मिश्रा के गाए इस लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत। सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म बाबुल से ये प्यारा सा गीत।

वाणी क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है।

खुद लो, मैं तुझ कर जा सकता, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे खुला सकता, तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

0: मोहित चौहान के गाए फिल्म दिल्ली 6 के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26

0: 20 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी